वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ये तुम्हारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीत दे कहने। तुम्हारे सारे यही बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

जिन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं, इस वक्त तो सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक जी श्रोताओं, ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते न कार्यक्रम दा अगला गीत तो सारी इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने

सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े

0: सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े।

0: हर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: लौट आया तो क्या होगा? कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
1: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
2: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
1: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
3: Oh, shit!

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ आपके लिए आज का पसंदीदा आपका कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। कार्यक्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं इस वक्त का धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं, और वातावरण में नमी है 69%। और दिन भर के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पे जो है वो बादल छाए रहेंगे और छुटपुट बारिश की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का जो है आगाज हो चुका है। कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे, बातचीत का आनंद भी उठाएंगे, साथ ही साथ जानकारियां साझा करेंगे और सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। जिंदगी प्यार का गीत है।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप मेरी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला हर नया पल आपको खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका देता है। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं आपके लिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला हर नया पल आपको खुद को बेहतर बनाने का एक

के लिए भी हम उसी सोच में, उसी लूप में पड़े रहते हैं और जो बीती हुई बातें हैं उनको ही दोहराते रहते हैं और अपना आने वाला समय भी और अपना ये जो प्रेजेंट समय है, प्रेजेंट मोमेंट है, उनको भी हम बर्बाद कर देते हैं। बजाय इसके हर आने वाला जो पल है, आने वाली नई जिंदगी वह है, वो हमारे लिए हर पल कुछ ना कुछ नया लेकर के आती है। जो बीत गया है उसे एक सबक की तरह हम लें और उससे जो भी हमें शिक्षा और सबक मिलता है उसे हम जरूर अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ ना कुछ सीखें, और अगर कुछ नकारात्मक रहा है तो उसको भुला करके आने वाले पलों पे फोकस करें, आने वाली ज़िंदगी को हम बेहतर बनाएं। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, हर दिन हम आपके साथ हर दिन के बारे में बात करते हैं, यानी जो भी कुछ खास रहता है हमारे दिन में उसके बारे में हम आपसे ज़रूर बात करते हैं। और आज के दिन भी हम बात करेंगे, और आज के दिन हम आज की नहीं बल्कि कल आने वाले दिन की बात करेंगे। आज है श्रोताओ 4 जून और कल 5 जून, और 5 जून को एक बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा सा हम दिन कहें या एक उत्सव कहें, वो जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में। विश्व पर्यावरण दिवस जो है श्रोताओं वो मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसका इतिहास, और क्या इसको मनाने का जो है हम कह सकते हैं फ़ायदा रहता है, ये सारा कुछ हम आपके साथ कार्यक्रम में आगे जरूर इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा, 9:30 पर भी आप बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्रह्मी खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए हैं। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित 4-लेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप करने के निर्णय पर विचार किया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों ने प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों ने 6,40,00,000 रुपए मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई है, जिसमें इस वर्ष 4 गुना से अधिक वृद्धि की उम्मीद बनी है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाए जा सके। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव की अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर को आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीनी से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नू ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नू ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10 से 12 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नू ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नू की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: धर्म गुरु दलाई लामा को संगीत की दुनिया के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ने मैक्लोडगंज में प्रदान किया। ये अवार्ड उन्हें ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस ऑडियो बुक में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ करुणा, शांति और मानवता की एकता के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा भारत युवा के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। ये एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें भाग लेने के लिए कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। विभिन्न राज्यों से चयनित इन स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इस महीने के अंत तक 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे। कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। CSIR IHBT के तकनीकी सहयोग से शुरू हुई ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। तकनीकी मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने छोटे स्तर पर इसकी खेती शुरू की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रयास जारी रखे और आज ब्रह्मी गाँव की पहचान बन चुकी है। महिलाएं अब ब्रह्मी की खेती के साथ साथ इसके मूल्य वर्धित उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। ब्रह्मी से कैंडी, शरबत, स्वास्थ्य वर्धक पेय और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिन्हें बाजार में अच्छी मांग मिल रही है। महिलाओं की इस पहल को बाजार से भी अच्छा समर्थन मिला है। स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था बनने के बाद उत्पादन लगातार बढ़ा है। ताजा ब्रह्मी 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि सूखी ब्रह्मी का मूल्य 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाता है। आज धानक गांव की ब्रह्मी हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजी जा रही है जहां इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, शरबत और स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बढ़ती मांग के चलते अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत व जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है जिसमें आयोग भविष्य के लिए इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। HP शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा। मंडी जिले के ब्रह्ममुखी और खग्रांगो क्लस्टर में इस वर्ष प्लम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है जिससे बागवानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता की जा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुंचाया गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन में मेयर पद ओपन। पिछली बार नगर निगम सोलन व धर्मशाला में मेयर पद महिला, मंडी, पालमपुर में थे अनारक्षित। दैनिक जागरण लिखता है, 4 नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित, 5 वर्ष होगा कार्यकाल। पंजाब केसरी के शब्द है, पंजाब जाने वाले हिमाचल के सभी वाहनों से वसूले 10 से 100 रुपए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ समारोह पर दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सोमवार तक होगी जिला परिषद BDC की शपथ, पंचायतों के लिए अभी CM के फैसले का इंतजार। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिलने जा रहे 3 नए जज। हिमाचल दस्तक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जायसवाल के नाम किए फाइनल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईमानदारी से इसे सफल बनाए, हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+POINT ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है फिर से कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत भी होगी, जानकारियां भी साझा करेंगे, लेकिन अंतराल जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अब चलते हैं सीधा सीधा कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर। सुनवाते हैं आपको ओम शांति ओम फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आज के दिन के इतिहास को जानने का, तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास घटा था आज के दिन इतिहास में।

आज के दिन यानी 4 जून 2001 नेपाल के नव नियुक्त नरेश दीपेंद्र का अस्पताल में निधन। ज्ञानेंद्र की ताजपोशी के विरोध में हिंसा भड़की, हत्या।

बच्चों, तो आज ही के दिन यानी 4 जून 2005 लाल कृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्म निरपेक्ष व्यक्ति बताया। चार जून 2007 चीन के उप प्रधानमंत्री हांग चू का निधन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया।

क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की। चार जून 2011 नव सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि भारतीय लोग आर्थिक वृद्धि पर पर्यावरण रक्षा को मामूली रूप से प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी गैलप ने अपने ताजा सर्वेक्षण में कहा कि ज्यादातर आबादी अर्थव्यवस्था से ज्यादा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित

4 जून 1948 को अनिल शास्त्री, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी जन्म हुआ। चार जून 1946 एसपी बाला सुब्रमण्यम, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक, इनका भी जन्मदिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। चार जून 1936 हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्मदिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। श्रोताओ, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई इतिहास की कुछ खास घटनाएं और आज के दिन जन्मे कुछ खास लोग। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं श्रोताओ गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब रुख करते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको श्रोताओ कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब कार्यक्रम में एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं श्रोताओं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बीते कल लोक भवन में हिमाचल प्रदेश की प्रेरणादायक उपलब्धियों पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक हाई फ्लायर का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचारों के प्रसार के साथ साथ मीडिया समाज को शिक्षित करने, जनमत को दिशा देने तथा सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करने का कार्य भी करता है। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाने की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक में शामिल कई विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में फिर से वक्त हो रहा है अंतराल का, बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म रन से।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है और वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। ये कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। श्रोताओं, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया और तभी से यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया है। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी जानेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में, कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

1491.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए फिर से चलते हैं जानकारियों की ओर।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कांगड़ा जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जनगणना 2027 के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनगणना संबंधी अपनी जानकारी अवश्य दर्ज करें। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में जानकारी साझा करते हुए डीसी हेमराज बैरवा ने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करते हुए कहा कि जनगणना कार्य के तहत 1 जून से लेकर 15 जून तक जिला के नागरिक स्वगणना के तहत वांछित जानकारी भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा, जो कि गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना पर आधारित होगा। द्वितीय चरण में अगले वर्ष फरवरी माह में वार्षिक जनगणना की गणना की जाएगी, जबकि दुर्गम क्षेत्र मुल्तान में सितंबर माह में वार्षिक जनगणना की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। जनगणना कर्ता और पर्यवेक्षक मोबाइल उपकरणों के माध्यम से घरों और परिवारों में संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे, जिससे जनगणना कार्य में तेजी लाई जा सकेगी और 16 जून से घर घर आने वाले प्रगणकों को भी कार्य में सुविधा होगी। लोगों से कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन स्वयं की जानकारी अपलोड करने का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए स्वगणना पोर्टल 1 जून से 15 जून तक खोला गया है। सभी परिवारों के मुखिया या अन्य लोग इसमें अपने मकानों एवं भवनों संबंधित जानकारी स्वयं इस पोर्टल पर भर सकते हैं। श्रोताओं, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में फिर से समय हो रहा है श्रोताओं अंतराल का, बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शोधो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में अंतराल के बाद। श्रोताओ, कार्यक्रम में अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में अगला बहुत ही प्यारा सा गीत जब वी मेट फिल्म से।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। जी हाँ, 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, सचेत करने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये जो खास दिन है ये मनाया जाता है। तो आप सब भी बढ़ चढ़कर मिलजुल कर इस पर्यावरण दिवस में भाग लें, ना सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा हर दिन का कर्तव्य होना चाहिए। अपनी पृथ्वी को साफ स्वच्छ रखना और जीने लायक बनाना और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे ऐसा स्थान बनाए रखना जिसमें जो आगे आने वाले बच्चे हैं या आगे लोग रहेंगे, जिएंगे, वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जो है इस पृथ्वी पर बिताएं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस के बारे में कि कितना ज़रूरी है पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखना और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना। कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपको के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में खट्टा मीठा फिल्म का गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत। श्रोताओं सजदे किए हैं लाखों। कई बार हम जिंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी इंसान को या अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत सजदे बहुत मन्नतें करते हैं, उसके बाद जब वो चीज़ हमें हासिल होती है तो दिल में खुशी जो होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो इसलिए आप भी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं या आपको मिल गया है और सजदे किए हैं, आपने बहुत सी दुआएं मांगी हैं, तो उस चीज़ को बड़े प्यार से रखिए, बड़े अच्छे से उस चीज़ को आप जिएं और इंजॉय करें रेडियो गुंजन के साथ इस प्यारे से खट्टा मीठा फिल्म के गीत को।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आप पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, और अब आपसे लेना होगा इस कार्यक्रम को यहीं आपसे विदा। आपसे ये वादा करके जा रही हूँ कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक बने रहें रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहें रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: टैक्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाए। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी

0: की संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सागर। इस शो का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। ऑर्गन इंडिया जो कि एक संस्था है जो बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को पता चल सके कि जीवन जो यकीनन एक उपहार है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए वो उपहार शाप में तब्दील हो जाता है, लेकिन उस शाप को वापस से उपहार बनाया जा सकता है। और इसी बात को विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर भवानी सिंह। 38 वर्ष इनकी आयु है, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और एक छोटी सी विनती आप लोगों से करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और जो किसी और का जीवन बचा सकती हैं। तो सबसे पहले भवानी जी आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: सर मैं जानना चाहूंगा आपके उस टाइम फेज के बारे में जब आपके साथ ये सब हुआ, तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या थे आपकी बॉडी के?
3: ये लगभग अप्रैल 2004 की बात है जब मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो उस वक्त एक स्पोर्ट्स शूज पहने के कारण मेरे पैर के अंदर थोड़े से कॉर्न हुए थे और उनकी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी के कारण जो पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स थे हाइपरटेंशन वो हुआ। बाद में एक महीने तक एनालिसिस किया कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाए, तब पता चला कि जो एंटीबायोटिक मेरे को दी गई थी, पेन किलर्स जो मेरे को दिए गए थे पोस्ट ऑपरेटिव, उनके कारण किडनी फेल्योर हो गई। तो पोस्ट फेल्योर जयपुर के अंदर ही मेरा डायलिसिस हुआ और एक महीने तक डायलिसिस होने के बाद मेरे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तब किडनी ट्रांसप्लांट का इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो सबसे अच्छा सेंटर था वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरे को शिफ्ट किया गया। एक महीने तक वहाँ पे फिर डायलिसिस हीमोडायलिसिस किया गया और जस्ट एक महीने बाद में मेरे फादर्स, मेरे जितने मेरे रिलेटिव थे जो किडनी डोनेट करने के इच्छुक थे, उनका क्रॉस मैच किया गया। तो सबसे अच्छा जो क्रॉस मैच मिला वो मेरे फादर का था, लगभग 55% के करीब क्रॉस मैच हुआ और फिर 9 जून 2004 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल नॉर्मल एकदम जो जीवन था, पहले प्रिकॉशन रहा 2 साल तक, अच्छा प्रिकॉशन रहा, मास्क लगा के रखना, बॉइल्ड वाटर पीना, बाहर नहीं गया मैं कहीं भी, लगभग घर के अंदर ही रहा और काफ़ी थोड़े वो प्रिकॉशंस थे जो रखने पड़े। उसके बाद में डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जॉब लग गई, हाँ पोस्ट ऑपरेटिव मेरी शादी हुई, अभी 2 बच्चे हैं और अभी मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ और आज तक मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल फिट हूँ, कंटिन्यू मैं अपनी मेडिसिंस ले रहा हूँ।
2: सर इन सब बातों पर आएंगे लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके उस टाइम को अच्छे से जानना चाहता हूँ जब आपके साथ ये सब हो रहा था। लाइक जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण आपके पैर में दिक्कत हो रही थी, तो जब डॉक्टर ने आपको बताया कि किडनी खराब हो गई है, तो उस टाइम पर क्या गुजरी, पूरे परिवार में कैसा माहौल था, आपके क्या विचार थे अगर आप याद कर पाए क्योंकि पुरानी बात है?
3: हाँ जी ये मैं रिकॉल कर सकता हूँ क्योंकि जिस वक्त पहली बार जब ये रिपोर्टिंग हुई किडनी की और उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन जो था वो 10 के आसपास आ रहा था, तो जब उसका रीजन पूछा गया तो डॉक्टर्स ने मेरे को नहीं बताया लेकिन फादर को साइड में लगा जाके बोला कि किडनी फेल्योर हो गई है तो अब इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो वो एक शॉकिंग मूवमेंट था फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि आसपास ऐसा कोई केस था नहीं कि जिसकी किडनी फेल हो गई हो और हमने सुना हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरी 5,000 या 10,000 की आबादी वाले गांव था उसमें शायद मेरा पहला था, तो बहुत शॉकिंग थी ये। और फिर 10-20 दिन लगे नॉर्मल होने में लेकिन फिर जो भगवान ने कहा उसके हिसाब से ढलना पड़ा और अंततः डायलिसिस भी लिया गया मेरे को।
2: जी जी तो किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब डायलिसिस तक पहुंच गए। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो आगे का सफर है वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से वापस एक बार विनती करूंगा, हमारे साथ बने रहिए और इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें अगर किसी के समझ में आ गई तो बहुत सारे लोगों को जो है जीवन दान मिल सकता है और उनका जीवन एक उपहार वापस से बन सकता है। पर अभी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलिए दोस्तों अपने उसी बातों के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, जिसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भवानी सिंह, जो किडनी रेसिपिएंट है। 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इनकी जिंदगी का सफर हम जान रहे थे। अभी तक इन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पर गए। और उस टाइम पर माहौल ऐसा था, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे उस कस्बे में जो इनका इलाका था, वहां पर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद सर क्या सोचा, मतलब किस तरह के विचार आपके चलते थे? कि आपको पता था कि कोई किडनी दे देगा, उम्मीद थी, या फिर ऐसा था कि नहीं बस हो गया?
2: उस वक्त ट्रांसप्लांट का तो ख्याल ही नहीं था। पहले तो किडनी फेल हो गई थी, तो पहले तो ये था कि ये इसको क्या करना आगे। तो सबसे पहले जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने डायलिसिस का ही उन्होंने सजेस्ट किया कि डायलिसिस कराओ अभी तो, और फ्यूचर के अंदर जब भी आपको डोनर मिले और क्रॉस मैच मिल जाए तो फिर ट्रांसप्लांट की हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर रिव्यू के लिए मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली गया, तो उन्होंने बोला कि अभी यंग एज है, तो आप डायलिसिस ज़्यादा ना करवा के ट्रांसप्लांट पे शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उनकी एडवाइस के हिसाब से फिर मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी ग्रैंड मदर ने क्रॉस मैच करवाए। और जो क्रॉस मैच थे जो सबसे बढ़िया मिले वो मेरे फादर के थे। और डोनेशन के लिए तो एक मेरी सिस्टर्स भी जो अनमेरिड थी वो भी तैयार थी, लेकिन फादर ने फिर प्रेफर किया कि मैं ही दूंगा, कि वो तैयार थे इस चीज़ के लिए। घबरा मतलब इसे कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी ये किडनी मैं अपने बच्चे को दूंगा तो फिर मेरे शरीर में क्या बीतेगी। वो उनको बिल्कुल, मेरे फादर को चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल इजीली तैयार हो गए थे देने के लिए।
1: जी, और खास तौर पर बच्चा जिसकी उम्र महज 19 वर्ष हो। तो 19 साल के आप उस टाइम थे, क्या कर रहे थे उस टाइम? आप कौन सी क्लास में थे, इस कॉलेज में थे, क्या थे?
2: जी मैं उस वक्त अलवर के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, NCR में आता है, दिल्ली NCR में। उस वक्त मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वहीं पे फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रहा था।
1: तो पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। अब यहाँ पर बात आ गई थी जीवन के ऊपर, कि जीवन कैसे बचे। तो जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग आ गए थे आपके लिए, अपने जो है ऑर्गन्स डोनेट करने, अपनी किडनी डोनेट करने। पर सवाल सर यहाँ पर ये है कि लोग आ जाते हैं लेकिन सबका मैच नहीं हो पाता। जैसा कि आपने कहा कि फादर साहब का मैच हुआ आपके, ठीक है, तो आप क्या, किस तरीके से अब आप उस चीज को देखते हैं? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो आज भी मेरे हिसाब से एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोग डर जाते हैं। जबकि एक इंसान अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट करे, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, जो अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, तो उससे काफी लोगों की जिंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ऑर्गन्स डोनेट करना कितना जरूरी है, और जस्ट इन केस आपके परिवार में से अगर किसी का भी आपके साथ मैच ना करता क्रॉस, तो आपके क्या कंडीशन होती, कहाँ होते, आप कैसे देखते हैं उस चीज को?
2: पहले तो मैं यूं बता दूं कि लगभग पर ईयर 5 से 6 लाख जो पीपल है उनकी किडनी डैमेज होती है और डायलिसिस पे आते हैं। मतलब वो आदमी है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की या एक किडनी या एक ऑर्गन की जरूरत है जीने के लिए, लेकिन महज उनका मात्र 8% मान के चले अब 35-37,000 का ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो अब ये मानिए कि जो बाकी के जो 92% या 90% पीपल है वो डायलिसिस पे रहते हैं। डायलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर आपका जो ब्लड है एक मशीन के थ्रू हर 3 दिन के बाद में साफ किया जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के काफी चांस होते हैं और उसमें सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होती है। तो डायलिसिस में आप लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस हैं, और आपको हर 3rd दिन डायलिसिस करवाना होता है। मशीन के थ्रू आपका ब्लड साफ होगा, वापस पूरी प्रोसेस से वापस आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में वो डाल दिया जाता है। तो एक पेनफुल प्रोसेस भी है और एक बहुत थ्रेटनिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका परिवार का कोई सदस्य या आपके जो मिलने वाले हैं रिलेटिव्स हैं, जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऑथराइजेशन के अधीन हो, क्योंकि काफी जगह अंग का व्यापार भी किया जाता है। तो उस चीज से परे जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपके मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आपकी दादी माँ हैं, आपके दादाजी हैं या आपके नाना जी या नानी जी, बिल्कुल जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वही अंगदान कर सकते हैं, जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से। तो अंगदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम मतलब जो किडनी होती है, जो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में भले ही 2 किडनी है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एक्टिव रहती है 60% वो एक किडनी रहती है, दूसरी तो बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहती है, जो सारा वर्कलोड लेती है वो एक ही किडनी लेती है। अगर आप एक डोनेट भी कर देते हो किसी दूसरे को तो आपके शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, डोनर इजीली लाइफ जीते हैं। तो अगर आपने एक अपना अंग या किडनी दूसरे को दे दिया तो दो जने सर्वाइव कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों से। तो एक जागरूकता बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए कि अंगदान से डोनर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेटर लाइफ जीता है वैसे पहले की तरह, कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है लाइफ लॉन्ग। एक कोई ज्यादा से ज्यादा एक लेप्रोस्कोपी के तीन टांके आते हैं तो 3 दिन बाद में एंटीबायोटिक के बाद में हील हो जाते हैं, और उसके बाद में ना कोई फॉलोअप है डोनर का, ना उसके बाद में कोई उसकी मेडिसिन है, ना कभी उनके कोई ऐसी कंपलसरी वो मेडिकल रिव्यू है कि उनको हर महीने में 6 महीने में साल भर में चेक करवाना है। हाँ, रेसिपिएंट जरूर प्रिकॉशनरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेता है, लेकिन डोनर के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए अंगदान बहुत जरूरी है ताकि एक नया जीवन मिल सके।
1: जी जी। अब यहाँ पर सर दूसरा सवाल मेरा कि अगर आपको उस टाइम पर वो किडनी ना मिलती, किसी का भी मैच ना करता, तो आप कैसे देखते हैं जीवन कैसा होता या नहीं होता, या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने होते?
2: ये सोच के तो बड़ा थ्रेटफुल लगता है, पेनफुल भी लगता है कि शायद मैं डायलिसिस पे होता, नहीं मिलती तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिलेटिव्स की या मदर फादर की अगर क्रॉस मैच नहीं होता तो शायद मैं डायलिसिस पे होता, और डायलिसिस पे कितना दिन सर्वाइव करता ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं आज जैसी लाइफ जी पा रहा हूँ वैसी जी पाता।
1: जी जी जी। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद इस सफर को आगे लेकर चलेंगे, और अब हम जानेंगे ट्रांसप्लांट के बाद के जीवन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको पता चले कि जीवन से बड़ा कोई उपहार है नहीं। तो ये तमाम बातें हम करेंगे भवानी सिंह जी के साथ, पर अभी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलेंगे दोस्तों अपनी बातों के सफरनामे को आगे लेकर चलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार एक खास प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है ऑर्गन इंडिया ने। उसमें हमारे साथ मौजूद है आज मिस्टर भवानी सिंह, एक किडनी रेसिपिएंट है। मैं हूँ सागर। आइए जानते हैं भवानी सिंह जी से कि उनके जीवन में जब वो फेज आया, जब ट्रांसप्लांट उनका हुआ, उस टाइम पर कैसा वो सब रहा। तो सर बताइए कि कैसे वो सब चीजें मैनेज हो पाई, लाइक कौन कौन आपके लिए सामने आए एंड क्या वो प्रोसीजर रहा पूरा। आप तो जाहिर सी बात है डायलिसिस पर थे।
2: डायलिसिस के दौरान जब ट्रांसप्लांट होता है तो जैसा मैंने बताया कि जो एमपीएस हॉस्पिटल है किडनी का नडियाद गुजरात के अंदर, वो अच्छा नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। तो अच्छा होने के साथ साथ वहाँ पे पैसे भी, मतलब एक पैसे की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंशियली भी आपको मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि मेरे फादर वेटनरी के अंदर एक बीए थे, कंपाउंडर थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफी पैसा खर्च हुआ। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरे जो मामा जी थे उन्होंने काफी हेल्प की, मेरे जो अदर रिलेटिव थे फूफा जी वगैरह वो भी आ गए, पूरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पे आए। और लगभग गुजरात के अंदर इतनी दूर से 700-800 किलोमीटर से चल के वहाँ पे आना बड़ी बात थी। तो मेरे को एक मॉरल सपोर्ट मिला कि अपना अकेले नहीं है, परिवार के साथ जो रिलेटिव भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो बहुत लकी हूँ मैं कि वो वहाँ पे मौजूद थे। फाइनेंशियली भी रूप से भी सपोर्ट कर रहे थे और मोरली भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उससे मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मैं मजबूत रहा खुद भी। और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में ऐसी बात है कि जैसे ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में जैसे 10 दिन तक तो वो आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद में मैं 3 महीने तक वहीं रहा नडियाद के अंदर। नडियाद अहमदाबाद में छोटा सा टाउन है लेकिन वो अच्छा हॉस्पिटल है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट भी वहीं की है इंडिया के अंदर अभी। तो वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर महेश देसाई ने मेरा ट्रांसप्लांट किया जो गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी यूके रहते हैं। और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में हर 3 दिन से मेरे को फॉलोअप हुआ। 3 महीने तक उन्होंने हॉस्पिटल के पास में मेरे को रखा, रूम लेके रखा रहा वहाँ पे, और बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं रहा क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन के चांस आपके शरीर के अंदर, अगर कोई दूसरा ऑर्गन अपन डालते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आपको बहुत हाई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि वो किडनी आपके शरीर में मेंटेन रहे और आपका शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करे। तो उसमें एक नुकसान ये है कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर दिया जाता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एकदम जीरो कर देंगे तो आपको दूसरे खांसी बुखार जुखाम है वो आसानी से होने के चांस रहते हैं। इसी कारण पोर्ट ट्रांसप्लांट मेरे रूम में किसी को भी आना मना कर दिया गया, किसी के जुखाम खांसी है तो उसको दूर रखा गया। मेरा अलग रूम था, खाना पीना भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बॉइल्ड करके मेरे को दिया जाता था। किसी घर पारिवारिक सदस्य की अगर किसी तरह की कोई वायरल है तो उसको मेरे से दूर कर दिया जाता था ताकि जब तक हाई डोज इम्यूनोसप्रेस की चले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने वाली दवाइयों की चले, तब तक मैं सेफ रहूं। और दिन में जो खाना है वो है जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उस हिसाब से मैंने मेडिसिन और दवाइयों को बरकरार रखा
1: जी। अब जानेंगे यहाँ तक आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपने बताया कि उसके बाद का जीवन कैसा रहा, आप अस्पताल के पास रहे, 3 महीने तक फॉलोअप चला और वो तमाम जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया। सबसे पहले आपके पिताजी के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने किडनी आपको डोनेट कर दी उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा उनका जीवन रहा।
2: किडनी डोनेट करने के बाद में जैसे साथ में ट्रांसप्लांट जब होता है तो दोनों साथ ही रहते हैं, डोनर और रिसिपिएंट। मैं जरूर 10 दिन तक रहा आईसीयू में लेकिन उनको 3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और 3 दिन बाद में डिस्चार्ज करने के बाद में वो रेगुलर फॉलोअप पे रहे, 15 दिन बाद में फिर उनकी दवाइयां बंद हो गई। उसके बाद में मेरे साथ 3 महीने तक वो यहीं रहे, चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में थे तो अपनी छुट्टियां लेके रहे। और वहाँ जाने के बाद में जब यहाँ हम यहाँ से चले गए राजस्थान, गुजरात से जब राजस्थान वापस चले गए तो फिर उन्होंने जाते ही अगले दिन से अपनी जॉब पे वापस जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ की और उनके जो डिपार्टमेंट था मेडिकल हेल्थ उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की। तो और वो खुद भी बहुत स्ट्रांग पर्सन थे, हालांकि फिर बाद में पोस्ट ऑपरेशन के 15 से 20 साल बाद में जस्ट 2-3 साल पहले उनके लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
1: जी जी, लेकिन वो किडनी की वजह से जो डोनेट की उन्होंने उससे कोई दिक्कत नहीं हुई?
2: नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो लंग कैंसर तो एक अलग वो अलग चीज है, वो उसका तो अननोन कारण था
1: जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी तक, एंड आपने बताया कि शायद आपकी शादी भी ट्रांसप्लांट के बाद ही हुई, तो उस पूरी जर्नी के बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, कैसा अभी तक का जीवन रहा है।
2: 2004 में ट्रांसप्लांट के बाद में जब मैं 3 महीने के फॉलोअप के बाद में अपने वहाँ आया, गांव आया, तो शुरुआत में किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था क्योंकि गांव कोई मिलने वाला आता तो हो सकता है उसके वायरल हो और मेरे हो जाए। तो बिल्कुल सेपरेट रखा गया, ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना किसी शादी के अंदर, ना किसी प्रोग्राम में, कहीं नहीं जाता था। जो बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड वाटर है, उसको कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे फिर मेरी जो स्टडी थी वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो रही थी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने का फैसला किया। और एक साल बाद में मैंने बैक के रूप में, वो तो बैक तो लग गई थी 2004 वाली, तो उसके बाद में मैंने स्टडी को वापस स्टार्ट किया। 2007 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट करी। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में 2007 के अंदर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हुआ। उसी दौरान मेरी शादी हुई और उसके बाद में शादी होने के जस्ट एक साल बाद में मेरे एक लड़का हुआ और अभी एक लड़की भी है, गुड़िया भी है जो 8 साल की है, लड़का अभी 12 साल का है। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और एडिशनल चार्ज भी है मेरे पास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का, तो मैं दोनों चार्ज देख रहा हूँ।
1: कुल मिलाकर जो एक नॉर्मल जीवन होता है, मतलब वैसा जीवन आपका चल रहा है, एक सुखद परिवार है और अच्छे से आपका जीवन जो चल रहा है, अब जाना चाहेंगे स्पोर्ट्स, क्योंकि आप खेलते हैं अभी, तो कोई कठिनाई आती है स्पोर्ट्स खेलने में या कैसा लगता है या क्या वो प्रेरणा है आपकी?
2: ये तो एक माइंडसेट की बात है। हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हो जाएगी या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट इतना हैवी नहीं करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में बिल्कुल नॉर्मल एकदम एग्जिस्टेंस है तो आप बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। पहले मैं ट्रांसप्लांट से पहले क्रिकेट वगैरह खेला करता था, लेकिन इंजरी की वजह से मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है बॉल ऐसी जगह लग जाए जहाँ अपना ट्रांसप्लांट हुआ, तो हैवी गेम्स को मैंने अवॉइड किया। लेकिन जो लाइटर गेम थे जिनके अंदर अपने को डायरेक्ट इंजरी नहीं हो, बैडमिंटन है, चेस है, पेंटांग है, लॉन बॉल है, इनके अंदर पार्टिसिपेशन चालू किया और धीरे धीरे धीरे धीरे आज मैं अभी इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके लिए फाइनल हुआ हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर जो 2023 के अंदर अभी जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं उसमें मैं इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
1: कौन सा गेम है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
2: मैं वैसे तो ग्रुप है गेम्स के, 3 गेम्स है, एक है लॉन बॉल, एक है पेंटांग और एक है डार्ट।
1: आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप जाएं और परचम हमारा लहरा कर आए। सर यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मतलब इतना सब हुआ अभी तक, आप ट्रांसप्लांट के बाद 19 साल का सफर आप तय कर चुके हैं, एक चीज बताइए, मानते हैं आप कि जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है?
2: बिल्कुल, जीवन तो एक अनमोल उपहार है, क्योंकि जिस वक्त मैं बिल मौत के कगार पे खड़ा था उस वक्त कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और मेरे को लग रहा था कि शायद कल का मैं सूरज देख पाऊं या नहीं पाऊं, लेकिन जब मेरे एक दूसरे का अंग मेरे शरीर में आया और आज मैं जी रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि उसको मैं आज देख पा रहा हूं, जीवन को अच्छे से जी पा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से सबको अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डोनर है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ

0: इनके पिताजी उठकर आते हैं। ये लकी रहे कि इनके वो ब्लड ग्रुप मैच कर गए, जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं वो सब मैच कर गए। लेकिन अगर वो नहीं करते तो शायद बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती थी, शायद अभी तक भी डायलिसिस पर हो सकते थे। तो उतनी जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन ये लकी है कि इसके बाद उनके पिताजी का वो मैच कर गया और इन्हें किडनी मिल गई और इनका जो जीवन अनमोल उपहार है, जो शाप बना था वापस से, वो एक अनमोल उपहार बना। आप सभी लोगों से यही एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ कर अंगदान करिए, क्योंकि देखिए पहले तो लोग करते ही नहीं है, उसके बाद लोग करेंगे तो वहां पर जाकर पता चलेगा किसका मैच कर रहा है किसका नहीं कर रहा है एंड कौन क्वालिफाई कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो रेशो है बहुत कम रह जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स लग चुके होते हैं। कोई आखिरी पैगाम जो आप लोगों को देना चाहते हैं जिस टाइम आपको सुन रहे हैं?
1: मैं जितने भी श्रोतागण ये चैनल सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो किडनी फेल्योर्स के जो कारण है वो हमारी अज्ञानता भी है। जैसे हम बाजार में अपने को पेन हुआ और पेन किलर्स ले आए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उन जो पेन किलर्स हम डायरेक्ट मेडिसिन से खरीद के ले आते हैं और ले लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पेन किलर्स हैं उनका लेने से किडनी फेल हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स लगे, भारी सरदर्द हो रहा है, तो अपनी मर्जी से पेन किलर्स ना ले, प्रॉपर उसकी जाँच करवाएं। और जो डायबिटिक हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं वो कंटिन्यू अपना फॉलोअप करवाएं, क्योंकि किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण भी डायबिटीज़ है तो मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, अगर आपका रिश्तेदार में या आपके परिवार जनों में किसी किडनी फेल्योर्स या आरसीएफ से पीड़ित है तो आप उसको अपना अंग देके उसका जीवन बचा सकते हैं। किडनी देने से आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी फैमिली एक सिक्योर हो जाएगी और जो नॉर्मल जीवन एक व्यक्ति जीना चाहता है, उम्मीद करता है, वो आपकी तरफ से गिफ्ट होगा उनको कि आपने किसी एक आदमी की जान बचाई। और इससे बड़ा उपहार तो कोई है ही नहीं। भगवान ने जो आपको दी है शरीर, आपने एक अन्य व्यक्ति को एक तरह से नया जीवन दान दिया है और उसका एक नया जन्म है जो आपके कारण हुआ है। तो अंगदान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ना आपके शरीर में किसी तरह की कोई क्षति होती है या काम के अंदर कोई दिक्कत होती है। जैसा आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो ये जो कोई मिथ्या है ऐसी कि कमजोरी आएगी या फिर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, आशा करता हूँ जो मूल्य आप लोगों को देने के लिए हमने शो स्टार्ट किया था वो हम दे पाए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भवानी सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जाते हुए वापस से एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है लेकिन सबके लिए बराबर नहीं होता, कईयों के लिए बीच में दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करिए किसी और का जीवन जो आप वापस से एक अनमोल उपहार बना सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑर्गन इंडिया की पहल जीवन एक अनमोल उपहार आप सुन रहे थे। मेरा नाम है सागर, फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहु ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन के यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग अब नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशु तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही स्वागत है कने तो हाँ सारे दा ही नमस्ते है तो हाँ सारी ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने वाला काम है से करा देने न हर दिन अहाँ वास्ते कोई ना कोई जेड़ा काम कार है से अहाँ दा चलिया रहिंदा। कई बार होंदा कि अहाँ काम कार जेड़ा से सोची करी चलते न कि आज ये काम कार करना है कल ये काम कार करना है, पर अगर अहाँ अपने काम दे कन्ने कन्ने अपनी जेड़ा सेहत है सेहत दा ध्यान भी रखते न तो कुछ ही ना कुछ ही अहाँ अपने काम कार जो बेहतर तरीके ने करी पाते न। इसी कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहना है 2 से 3 बजे तक। तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते। हुण तुह सोचा दे होने ने कि गलबात अहाँ किन्ना करी सकते, नंबर भी तो तुह तक पहुँचाना है ना। इस नंबर पर तुह कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा जेड़ा कि अहाँ तुह तक पहुँचाई तय कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जरूर अहाँ कने जुड़ी सकते। इसी कन्ने अहाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज़ है से करदे न इस प्यारे दे गीत कन्ने।

0: हाँ बोला देना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने कार्यक्रम दा जिड़ा सफर तो हाँ तक चलिया ऐसे लाइव चलिया तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते। आज दे मौसम दे ऊपर अगर अहाँ गाल करिए ता कुथी ना कुथी मौसम जड़े से अपना जड़ा बदलाव है से जरूर लेंदा है पर अहाँ दे जड़ा श्रोता न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न करते हैं तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी
0: जी, तो हो कुछ ते बोला दे कने तो हम दा नाम क्या है जी?
1: मेरा नाम साहिल है और मैं दानू से बोल रहा हूँ।
0: जी साहिल जी, क्या काम कार लगाया तो हाँ क्या करा दे?
1: मैं अभी बस क्लास पास हुआ हूँ और अभी कॉलेज की एडमिशन लेने वाला हूँ।
0: जी अच्छा, कॉलेज एडमिशन जेड़े ऐसे लेने आ रहे तो हाँ जी। तो साहिल जी तो हाँ पहाड़िये से भी जेड़े ऐसे गल बात अहाँ नहीं करी सकते ना जी?
1: मुझे पहाड़ी समझ आती पर बोले नहीं होती है।
0: जी जी, और तो हाँ ये कार्यक्रम रोज ही सुनते
1: जी
0: जी, कदिया लगता तो ये कार्यक्रम
1: काफी अच्छा लगता है
0: जी? ता आज कुंडिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके जी तो हाँ
1: भजन लगा दो आप
0: जी। भजन कुंडिया जी,
1: गुना वाले माती का
0: जी जी जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: हां जी
0: जी, ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सासी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
2: जी? ठीक ठाक है, तो बोला
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। क्या हाल चाल है? मौसम दे
2: मौसम तो धुप्पे बड़े भारी हो रहे हैं ता
0: जी, गर्मी जी रह से ज्यादा हो दी।
2: हाँ जी, बड़ी बड़ी गर्मी है
0: जी, बड़ी ज्यादा गर्मी है
2: जी।
0: और नोई ताजी?
2: नोई ताजी कुछ नहीं, उर दे पियो, उर जमी पियो ना
0: जी। अच्छा, जमी पे है ना,
2: तो ना बाकी वाले कुछ कमाया नहीं है
0: जी। अली तक उरा उर जड़े से तैयार हो यंगा तो दीदी तैयारी है ना जी अली?
2: हां जी, फिर से जिला तो आड़ा करनी है ना, तो अलवा ट्रैक्टर ना तो करनी है ना, उनको तो बाल बना करनी है
0: जी जी, उन तो काम ही बड़े आसान है ना जी।
2: हां जी, आसान है जैसे तो पर लग नहीं होना, समझो आगे होना काम
0: जी जी जी। तो गर्मी छ अपना जेड़ा ख्याल है सभी जरूर रखना है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी, तो इस टाइम कितनी की गर्मी है?
2: गर्मी तो अभी सारी है यार ना
0: जी, ज्यादा है ना इस टाइम गर्मी,
2: बड़ी ज्यादा है, पत्ते पता लगा पक्का लग गया कि नहीं
0: जी जी जी। चलो अपना ख्याल रखा गने आज तो हाँ कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके
2: सुनाई जा। दो गुजरियां दूध बेचण आईया
0: जी, दो गुजरियां दूध बेचण आईया, ये फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी, चुनने वास्ते धन्यवाद जी तुहता जी। ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुह सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। अगले जेड़ा श्रोता न तेरा कन्ने भी कर दें गल बात। हेलो,
3: नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा बड़ा बड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
3: हां जी ठीक ठाक जी
0: जी। तुहा कुहा जगह दे रहने वाले न, कने तुहंदा ना क्या है जरूर दस
3: जी। दारनू ते तुहाड़ा पुराना श्रोता है जी
0: जी, पुराना श्रोता दारनू ते बोला दे।
3: हां जी हां जी
0: जी, अपना नाम भी जरूर जेड़े से हां जो दसी
3: दिया। मेरा नाम हरि सिंह है जी।
0: जी हरि सिंह
3: जी
0: जी, ता क्या बोला दा दारनू दा मौसम आज?
3: हां जी,
0: दारनू दा मौसम क्या बोला दा आज, किस प्रकार
3: है दारनू मौसम? बड़ी भारी गर्मी है जी।
0: जी बड़ी ज्यादा गर्मी है।
3: हां बड़ी ज्यादा गर्मी है
0: जी, तो गर्मियां च अपना जिहड़ा ध्यान है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी ना जी।
3: हाँ जी, हाँ जी,
0: चाहे गर्मी है चाहे ठंड है, हर मौसम च अपना जिहड़ा ख्याल है से ज्यादा रखने दी जरूरत होंदी।
3: हाँ जी
0: जी, और नई ताजी दाल नू दी
3: दाल नू नई ताजी तो कोई नहीं है फिलहाल, ठीक ही है सब कुछ है।
0: जी ठीक ही चाहिदा ना जी।
3: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से अपनी पसंद च सुनना चाहेंगे।
3: गीत मैं सुनना से नैरी उबरिया सीधे आसन लाया
0: जी, कुंदिया
3: नैरी उबरिया सीधे आसन लाया
0: जी। जी जरूर, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी। जी तशो तो बढ़ते न अपने कार्यक्रम दे सफर च अगे कने पहली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें।

0: दर्शकों तो सारे सुनिया ये भजन। इस भजन की फरमाइश अहां जो आई हुए दाड़ी ते कने तिना दा नाव है सहिल जी। सहिल जी तक अहां ये गीत पहुँचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय किया। इसी कने अहां अपनी जिहड़ा गल बात है तिहा पर थोड़ा देर वापिस सिड़े से आते हैं। दर्शकों तुहें क्या लगता कि अहां अपनी प्रकृति वास्ते कितना की सोचा दे? सोचना तो बनता है ना, अगर अहाँ सोच विचार करना शुरू कर दें ता ही अहाँ प्रकृति जो जड़े से कुछ ना कुछ बचाई पाते हैं। अपने जड़ा पेड़ पौधे न तिना दी अहाँ जो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, अहाँ जो भी ज़रूरत है कने तिना जो भी अहाँ दी ज़रूरत है। पेड़ पौधे जड़ा न से अहाँ दी जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। गर्मी दे मौसम च अहां हमेशा ये सोचते हैं कि ठंडी हवा जिहड़े से अहां जो मिलियां या ठंडी हवा जिहड़े से अहां जो मिली आती है तो कुछ ना कुछ अहां जो गर्मी ते राहत जिहड़े से मिली आती है। पर अहां किस प्रकार अपनी प्रकृति दी रक्षा करा दे या अपने जिहड़ा नदी नाले न तिना दी रक्षा करा दे या जिहड़ा कूड़ा कचरा है तिसियो किस प्रकार जड़े से अहाँ अपने घरे दी साफ सफाई तो अहाँ करी दे, पर कुछ ना कुछ अहाँ जड़ा नदी नाले न तिना जो नुकसान जड़े से जरूर पहुँचाई दे। तो जरूर इदे उपर ही गल बात होनी है कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी बढ़िया जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहांदा ना क्या है जी?
1: चैतड़ुए ते बोला दी ना
0: जी। चैतड़ुए दा मौसम जिहड़ा है से किस प्रकार है, कितनी की गर्मी है?
1: बस धुप्पां लगियां
0: जी। बाहर धुप्पां लगियां कने मन करा दा कि सिर्फ पंखे दिया हवा थल्ले ही बैठी रहे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: पर इस गर्मियों च पंखे दी हवा भी कुछ काम नहीं करा दी ना जी?
1: नहीं नहीं, एक तो शरीर लकड़ दी हो जावा तो।
0: जी जी, पर कुछ ना कुछ जेड़ा पुरानिया यादा न अगर हाँ तिना जो रिमाइंड कर दे ना जी, दोबारा ते फिर ते याद कर दे न ता से दिन से जेड़ा यादा न से हाँ जो फिर ते महसूस होना शुरू हो जानी है न कि नहीं कच्चे मकान बाकी ही सबसे बेस्ट थे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तिना दी खासियत अलग ही थी।
1: हाँ जी
0: जी। ता आज तुहां कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करिए जी?
1: गाना सुनना मैं एक माता तेरी जय ज्वाला माँ तेरी जोत निर्बल बे जग दी सारी जात दे पदना दे अंदर, ये गाना चाहूंगा
0: जी। जरूर, जय ज्वाला माँ तेरी जोत जगदी
1: अंदर
0: जी। जी जरूर, ये भजन जिड़े से तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद
0: जी। हाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

कानवी दशमलव दोमी का हर्ट्स पर ये है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे ही सुनिया ये गीत। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए तंगलोटिया थे कने तिना दा नावे रमेश जी। रमेश जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने आज अहाँ जिड़ा गल बात करा दिन कार्यक्रम च से करा देन कि यहाँ अपनी प्रकृति की जड़ा रक्षा है से किस प्रकार करा देन या अपना जड़ा योगदान है से किस प्रकार दे देन। तो हाँ सारे जो ही पता है कि जिन्ना अहाँ वास्ते यहाँ की फैमिली जरूरी होंगी तिन्ना यहाँ का जड़ा आस पास का वातावरण है सभी अहाँ वास्ते जरूरी होंदा। वैसे भी आज के दिन की अहाँ गल करन 4 जून 2026 की ता ये भी अहाँ वास्ते बेहतर खास है। हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा कने हर दिन दी अपनी जड़ा खासियत है से जरूर होंदी। कने अगले दिन दी या कल आले दिन दी अहाँ गल करिए तो कल जड़े से तुहां वैसे भी खास दिन जड़े से बनाना है विश्व पर्यावरण दिवस। तो किस प्रकार तुहां अपनी जड़ा शुरुआत है से कर देन अपने पर्यावरण वास्ते या अपनी प्रकृति वास्ते, क्योंकि एक दिन ही अहाँ जड़े से खास दिन नहीं बनाना है। हर दिन अहाँ जो अपनी प्रकृति वास्ते सोचना पौना किस प्रकार अहाँ साफ सफाई का जड़ा ध्यान है से रखी सकते न या जड़ा पौधा रोपण है से करी सकते न। तो सारे जो ही पता है कि पौधे जड़ा न स्याहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। बस एक काम नहीं करना है तो हाँ कि सिर्फ पौधा लगाई तो उसके बाद अहाँ का काम जड़ा है से सारा ही खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुह कोई पौधा लगा दे भी है तो उसकी प्रॉपर तरीके ने देखभाल करा जिन्ना एक पेरेंट्स एक जड़ा माता पिता है ना से अपने बच्चे की देखभाल करते न, उसी प्रकार इस पौधे की जड़ा रक्षा करना से तुहदा काम है। कने जलू अहाँ कोई भी फूल या कुछ भी लगा न तो अहाँ जो भी अच्छा लगता है कने अह इस पौधे दिखी करी ही अंदर अंदर खुश जड़ा है से होना शुरू हो जाते न। ये भी एक खुशी का जड़ा साधन है। प्रकृति जड़ा है से अहाँ जो हमेशा खुश रख दी है पर अहाँ अपनी प्रकृति जो किस प्रकार खुश रखा देन से तो हाँ थोड़ा दिया सोच विचार जरूर करा। इसी सोच विचार करने अहाँ अपने सफ़र जो आगे बढ़ा देन कने फिर ते थोड़ा कार्यक्रम का जड़ा माहौल है से चेंज कर देन। समय जड़ा है से अपनी रफ्तार लेकर ही हमेशा चल दे। तो कार्यक्रम जिसमें हुई है 2:30 तो इसी कने अगला जड़ा गीत है से तुह तक पहुँचा देन। कने इस गीत की फरमाइश अहम जो आई हुए दारनू ते हरी सिंह की फरमाइश।

माटी दी मैं है कार्यक्रम तोह सारे इस वक्त सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने फिर त्यां वापिस अपने कार्यक्रम च हाजिर होई हो न कने तोह सारे जोई फिर ते शशि दा जेड़ा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम जो सुना देना श्रोता अहां दा जेड़ा साथ है से हमेशा दिंदे न कने इस सफर दा जेड़ा इंजॉय है सभी लैंदे न इसी कने मेरी जेड़ा गल बात है तिहा पर भी गौर देने दी जेड़ा जरूरत है से है गौर देने दी जरूरत ये है कि प्रकृति दा जेड़ा महत्व है से जरूर समझा जेड़ा पेड़ पौधे न से अहां वास्ते कितने ज़्यादा जरूरी हैं जैलू अहां पेड़ कटदे न या कटना लगदे न तो जरूर एक बारी ये सोचा कि तपती धूप च ये पेड़ ही अहां जो छाँव जड़े से दिंदे न इस टाइम गर्मी जड़े से ज़्यादा पौधी तो अहां ये सोचते न कि पेड़ की जड़ा छाँव है पेड़ की जड़ा हवा है से अहां जो मिलियाँ पेड़ दिया जड़ा कलियां न या तिदे सुंदर जड़ा नज़ारे न से कुथी ना कुथी अहां जो खुदा दी देन है तहां किस प्रकार जड़ा पेड़ हैं तिना दी रक्षा कर देन या पेड़ जड़े से लगान देन तो पेड़ा जो बिल्कुल जड़े से कटने ते पहले 100 बार सोचा कने अगर अहां प्रकृति कन्ने छेड़छाड़ करा देन तो तिदा नुकसान जड़े से अहां जो दिखने जो भी जरूर जड़े से मिला दे अगर तुहां चाहते न कि अहां दा जेड़ा वातावरण है से साफ सुंदर कने ताज़ी हवा जेड़े से अहां जो मिले ताई मिली सकदी जालू अहां प्रकृति कने अच्छा जेड़ा व्यवहार है से करते न धरती दा इंसान कने रिश्ता बड़ा गहरा है जेड़ा धरती है ना से हमेशा अहां जो कुछ ना कुछ जरूर सिखांदी है ये हवा ये जेड़ा फिजा है से अहां जो हमेशा ये सिखाई करी जाती है कि अगर धुआं धुआं है तो धुआं धुआं जड़े से अहां जो बीमार करके रखींदा है कने जालू ताज़ी हवा चलती है या प्रदूषण कम हो जाता है तो हाँ फिर ते अपने वातावरण जो कुथी ना कुथी साफ जड़े से पाते न तो ज़रूर अपनी वातावरण या अपने पर्यावरण की रक्षा जड़े से ज़रूर करा पर्यावरण ने अहां जो यहाँ की जेड़ा प्रकृति है या ये पेड़ पौधे न तिना बड़ा कुछ अहां वास्ते दित्या चाहे सब्जियां दी गल करिए चाहे फल दी गल करिए सीजनल अनुसार हर फल अहां जो मिलते न हर सब्जी अहां जो मिलती है ये कुदरत दे नियम हैं ये कुदरत दिया जेड़ा देन है पर अहां किस प्रकार इस कुदरत दे देन जो स्वीकार कर देन या अस्वीकार कर देन स्याहा पर निर्भर करता है तो श्रोताओं थोड़ा दिया और आगे बढ़ देन कने अगली फरमाइश अहां तक पहुंची होवे थोड़ा दिया अपना मोबाइल फोन दी और नज़र जड़े से लगान देन ये फरमाइश अहां जो पहुंची होवे अहां तक व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा नाम है पल्लवी जी तक ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना तो वह सारे भी इंजॉय करा

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत ये फरमाइश तो गीत कन्ने थोड़ा जिहा जिहड़ा मन है से चेंज हो जांदे कन्ने जालू अहां गीत संगीत सुनते न तो गीत संगीत जिहड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है। कन्ने अज अहां जिहड़ा गलबात करा दे न से करा दे न कि अपनी प्रकृति दा जिहड़ा महत्व है से किस प्रकार अहां समझते न या जागरूक जिहड़े से होंदे न। तो हाँ सारे जो ये पता है कि प्लास्टिक दा जिहड़ा यूज़ है से अहां जो कम करना चाहिए, प्लास्टिक दा जिहड़ा इस्तेमाल है से अहां कम करते न तो अहां अपने जीवन जो और भी बेहतर जिहड़े से बनाई पाते न। कने अपना जिहड़ा जल है जल दी अहां कितनी की रक्षा करते न या कितना की जिहड़ा इस्तेमाल है से करते न। कई बार होंदा ना अगर अहां पानी दी गल करिए तो पानी हुण तां हर जगह हर घर घर जिहड़े से नल लगे हो, पर पहले होंदा था कि ज़्यादातर अहां बोड़ी दा पानी जिहड़े से यूज़ करते थे। कने बोड़ी दे पानी दी जिहड़ा अपनी खासियत है एक से तो हां सारे जो ही पता है बोड़ी दा पानी जिहड़ा नेचुरल पानी है नेचुरल जिहड़ा चीज़ा न से अहां बिल्कुल कम करी दियाँ। कने कुथी ना कुथी अपने जीवन जो बीमारियां दी ओर जिहड़ा से धकेली दिया। तो इसी कन्ने अगे बढ़ते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न। कार्यक्रम च समय जिहड़ा से सिर्फ हाल 15 मिनट न तो चलते न अगली फरमाइश सुनते न।

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुह सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुह सारे सुनिया ये भजन, इस भजन की फरमाइश हाँ जो आई हुए चैतड़ू ते कने तिना दा ना वे मंगल जी। मंगल जी तक तिना दी पसंद दा गीत तिना तक पहुँचाया, कने जितने भी बाकी श्रोता ने तिना भी इंजॉय किया। इसी कने अहां थोड़ा दिया और अगे बढ़ते न, कने अगला जेड़ा गीत है, अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचानी है, पर अगले जेड़ा श्रोता ने पहले कर देना तिना कने गल बात। हेलो,
1: नमस्कार जी, मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तुह कुथों ते बोला दी, कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मेरा नाम सुखदेव है जी।
0: जी कुथों ते बोला दी?
1: हाँ बोलो जी, उथले ग्राएं ते।
0: जी उथले ग्राएं ते बोला दी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। क्या काम कार छेड़े तो हाँ, क्या करा दे?
1: बस रेडियो गुंजन सुना दे
0: जी। कदे अ लगदा दा तो हम जो ये कार्यक्रम
1: लगदा अच्छा लगदा, रोज मैडम सुन दे आ
0: जी।
1: वहां जाना कना सचिन कपूर आ जाना 4 बजे
0: जी जी।
1: हां जी, तो हां बस दो दे तीन तो हां चलना कना
0: जी,
1: 4 ते 5 सचिन वाला चलना
0: जी। ता रेडियो
1: जी बढ़िया पास हो जाता
0: जी जी जी। और कदे आए उथड़ा ग्रां दा मौसम क्या बोला था इस टाइम?
1: मौसम तो बदल हो ही है हुन दा
0: जी, बदल हो ही आ।
1: हां मौसम पता नहीं है कल नु
0: जी, मौसम दा कोई भरोसा नहीं करी सकते ना जी।
1: जी
0: ता आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करगे जी?
1: ये तो गा तो तुहा बढ़िया सुना दे ना, अपन जेड़ा तुहा शिक्षा कन उपचार दा दे ना, बोला दे ना तुहा
0: जी।
1: जेड़ा जब बंदे सभी देखना कर देनी ने देना
0: जी, समझना जरूरी है ना जी।
1: समझना तो सो पूरी कंजर समझना ना, पहचान में तो सुनने वाले हैं
0: जी जी जी। अगर हाँ सोच विचार करना लगन या ऐसी सोच रख दे ना, तो कुछ ही ना कुछ यहाँ अपनी प्रकृति की रक्षा
1: दस्ता भी होंगे ना, पानी की दस्ता भी, पानी बचत करो वो करो
0: जी जी। क्योंकि पानी की बचत आज के दौर की यहाँ गल करिए बिल्कुल कम है ना जी। हर घर है जेड़े जी,
1: ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਯੂਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਨ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਲੜਾ ਨਾ ਤੇ ਯਾਂ ਬਾਕੀ ਪਤਬੁੱਲਾ ਦੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਆ ਯਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣੀ ਕੀਤਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਤੇ ਸਹਿਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਟਾ ਦੇ ਕੋ ਸੋਏ ਤੇ ਪੰਜ ਕਨ ਬਚਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾ ਸਾ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ
0: ਜੀ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ
1: ਸੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਆ ਦੇ
0: ਜੀ,
1: ਸਮਝਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਦੇ
0: ਜੀ।
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਂ
0: ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਹ ਖੁਦ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਣੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ
0: ਜੀ। ਅਗਰ
1: ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਸ਼ਟ ਬਣੀ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ ਜੀ जी। इसमें जिड़ा ऐसे हाल थोड़ा दे है, तो जरूर अपनी पसंद का गीत दसी दिया जी।
1: मैं सुना तो हाँ, सुना तो सुन ले आ लेने जी, सुना के यहाँ तो हाँ सुना तो आप लोग
0: जी जरूर जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा
1: जी। ठीक है जी
0: जी, ताशो तो हम जो ले चल देना अगली फरमाइश दी और।

0: दर्शो तुम तो सारे ही सुनिया ये गीत कदू बनया मज़ेदार से तो बनाने पर निर्भर कर दे कि यहाँ किस प्रकार जड़े से बना देने फिर इस कदुए का जड़ा खाने का अलग ही अंदाज है। तो इस गीत की फरमाइश अह जो आई हुए खनियारा ते कने तिनां दा नाम है चरणदास। चरणदास जी तक अहां ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने फिरी ते थोड़ा दे अगे बढ़ते हैं कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं। अगली फरमाइश भी तुह तक पहुँचानी है जिंदगी सोनी है
1: छड़िए ना ओवे सजन गरीब होवे।
0: दर्शो तो इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू तिना दा ना वे अजय कपूर जी कने से रहने वाले न रक्कड़ते।

90.2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता शुतो इसी कन्ने तुहां सारे अपनी रेडियो दो शशि जुदेया अनुमति कन्ने हमेशा खुश रहा हसदे रहा कन्ने अपनी प्रकृति दा जेड़ा ख्याल है से जरूर

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दिया तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

नमस्कार श्रोतों, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझगा तुम सभी रे रेडियो सेट में। कैसे तो सब उम्मीद करनो तो सब खरे बुने और अपने घरे खुश बुने तंदुरुस्त बुने हिंद सब भी अच्छी गल सब भी मोटी गल श्रोतों की इंसान की सो या भाग दौड़ भरी जिंदगी मैंने अपने वास्ते सच में यार लिटरली बोलूँ तो समय अपने वास्ते की सोना कड्डे पंदा है और समय अपने वास्ते कड़ना के सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शो तो है सब कुछ कर लेंदे सब भी रे वास्ते सब कुछ है एफर्ट भी लाई लेंदे हैं और एफर्ट्स इंदे लगते हैं है ना। लेकिन इंसान वाकई में कभी सुकून सो की बह करिए रे शो तो कि तो है अपने वास्ते क्या करो या अपने वास्ते तो है कितना करी मतलब कहने कहने अपने आप जो तो है स्पेशल फील कर लेंदे हैं। अगर तो है अपने आप जो ही ना स्पेशल फील करें दे तो है कसकी हो रही थों कि या तो है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये मेरे वास्ते ये करा और ये मेरे वास्ते ये करा सभी पहले तो तुस वो अपने आप जो स्पेशल फील कराना ना तदती वास्ते तो सोचना कि इंपॉर्टेंस तुस थो ज़्यादा तुंदे इंपॉर्टेंट कौन जानता कोई भी ना तो अपनी इंपॉर्टेंस रखने वास्ते अपनी इंपॉर्टेंस जानने वास्ते श्रोताओं एक गल विशेष ध्यान रखा कि जरूर और जरूर अक्सवाक पवित्र शब्द किया सो अपना ख्याल रखा है ना। अपनी इंपॉर्टेंस जान ले तो है अपना अहमियत अपनी अहमियत जान ले ता ही सोतों कस की हो रही अहमियत की सो तो है कर ही सकते हैं कस की हो रही इंपॉर्टेंस किया तो है जान ही सकते हैं। और रिश्ते माओ हर बार बोलूँ कि रिश्ता निभाना आसान गल ना बंदे रिश्ते निभाने माँ कभी झुकना भी बनता तो उसको है ना कभी बहुत सारी चीज़ अगेन सो मैनेज भी करना पैंती बैलेंस भी करना पैंती ता रिश्ते अगेन सो चलते हैं। और अपने आप जो प्यार करे ता ही तो है कसकी रिश्ते होगी कसी होगी भी प्यार कर सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर हुआ बहुत सारी जानकारी जो तुसो गया सो शेयर करनी ने तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत के सो हो सकते हैं 7088879 पर नंबर आक मौके फिर तू हो गया शेयर करनो हाँ 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गल विशेष ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर भुआ जानकारी किया सो दसने लायक जरूर भुआ ये चल दें श्रोताओं और कार्यक्रम मंच थोड़ा करी और हगो बढ़ दें और लेकर चल दिन सभी पहले मौसम भरी जानकारी थी और तू सब भी है ना जी मौसम भरी जानकारी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था इस समय अगर आऊँ गल करूँ श्रोता हूँ बिल्कुल तो आज थोड़ा करी और पा रखी सो हाई बुआ हा यानी कि बिल्कुल इस समय 20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो मौसम है श्रोता हूँ क्लाइमेट बन रहा है मौसम रहा तापमान किया सो 20 डिग्री रे आसपास बन रहा है और ह्यूमिडिटी रे गल करूँ यानी कि नमी जैसी अंग्रेजी में बोलते तो सो लगभग 50% किया सो बन रहा है श्रोता हूँ तो स्वागत बुझको सब भी रहा ना और थोड़ा करी फोन अंतर इंदे जो कनेक्ट होंगे तथी हैं टेक्निकली इशू की सो इच्छू करता है इसी ठीक कर देना है और आगाज़ बिल्कुल कर दें श्रोताओं आगाज़ तो चाहता है ना तो आगाज़ कर दें कार्यक्रम रहा और आगाज़ तो बाद श्रोताओं तुंदे सभी की फरमाइश तुंदे सभी की जो भी फरमाइश है बोली सो पूरी करनी ने बहरहाल तू सभी उदास इंदे जनाब की अन्य जानकारी के ना सो तू सो इस गीता थो बात के सो है शेयर कर दें बने रहे तो सब 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सुगी गूंज अपने पन रही और गूंज अजित बिंद प्यारे प्यारे श्रोता असोगी बन रहे तैयारी सब भी रही आइए जी चल दें और हुन दिन तो सभी गीत

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगैन सो चल रही था जनाब आज बुझी गो कार्यक्रम रहा है इन श्रोता सो गए कनेक्टेड हिंद और कुछ एक खास जानकारी तो सो गया है शेयर कर देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे
1: हैं? वन्निका बोल यू कल्पी जी।
0: वन्निका जी हेलो। अच्छा वन्निका जी कौन से ना गीत होना तो सु
1: सोने तो हूँ तो माहिया।
0: हाँ क्या बात है। ठीक है वन्निका जी कोई पोएम होना ले तो है हिंदी मंच
1: मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएगी पानी में डरो तो डर जाएगी।
0: क्या बात
1: है। डालो तो मच जाएगी।
0: ठीक है वन्निका जी जरूर तू सुबह है गीत होना ले है ना जी। ठीक है जी धन्यवाद। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो सचिन कपूर सोगी हूँ कर दिन बिल्कुल लाइव और इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते सुशील भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते क्या हाल चाल न?
2: वो ठीक ठाक है ना?
0: बढ़िया जी बढ़िया। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थम बोल रहे हैं जनाब?
2: हाँ तो ही हूँ बोलू कर दस कुमार
0: कड़ी थम जी
2: तो ही।
0: अच्छा क्या नाम दस तो है अपना?
2: संजय कुमार।
0: संजय कुमार। संजय कुमार जी क्या कर दिन तो है? अच्छा पेशा रटू बनाना लोहारा काम।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। ता कुंडी ने गीत होना पसंद कर ले संजय जी तो है?
2: लच्छी लच्छी लोग लांदे।
0: संजय जी पहली बार लगे तुम दे कॉल रेडी गुंजर मा। हेलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी संजय जी मेलो पहली बार लगे तुम दे कॉल रेडी गुंजर मा।
2: हाँ जी ठीक है जी।
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होना ले तू सुई गीता है। चलिए श्रोता वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच तो सब भी ट्यून कर रहे इस समय हिंदी अपनी गप्पा और कार्यक्रम हिंदी हिंदी अपनी गप्पा चल रही ट्यून भी तो है सचिन कपूर और रेडी गुंजन जो कर रहा था। चलिए जी कुछ एक खास जानकारी तो हो गया है शेयर कर लें देन तो सब कॉल जरूर कर सकते हैं नंबर में 10708 8 8 7 0 9 8 पर कॉल कर करे आइए चल दें थोड़ा करे और हूँ और श्रोताओं पर 5 साल वास्ते की है सो बढ़ने महापौर और उप महापौर पहले 2.5 साल वास्ते बढ़ते थी हिमाचल प्रदेश पर्यटन राजधानी धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम इस बार महापौर मेयर और उप महापौर जिसकी वो डिप्टी मेयर बनते हैं कार्याल न्यारा की श्रोता हूँ सो कार्यकाल पूरे 5 साल रहा भूना की अब चल रहा अब हल्ले तक की श्रोताओं दस नचंद इंजा पदा पर आरक्षण जो लेकर के है सो तमाम कयास और अटकलियाँ के थी सो पूरे तरीके होगी अब विराम अब इंजा लगी चुक रहा पहले बड़ी चल रही थी अब विराम की सो पूरी तरीके होगी लगी चुक रहा श्रोताओं नई व्यवस्था रहे तहत इस बार चुनाव में किसी भी वर्ग व्यवस्था की सो कोई विशेष आरक्षण लागू न हुआ है जठेरा सीधा मतलब हा कि अब किसी भी वर्ग तो महापौर और उप महापौर का चयन किया सो बुझ सकता है पहले बल्लू करते थे कि शायद SC वर्ग तो बुआ या SC वर्ग तो बुआ लेकिन अब कि ऐसा साफ कर ही देता है कि कोई भी आरक्षण किया सो लागू ना भूना हा ठेरा मतलब हा कि तुहे सीधा अब किसी भी वर्ग तो कि ऐसो महापौर भी बन सकता है और उप महापौर रचैन की ऐसो भी बुझ सकता है राजनीति के दृष्टिकोण तो बेहद महत्वपूर्ण जो इस समय है मनुगर्दन हॉट सीट सोहा धर्मशाला रे धर्मशाला रे हॉट सीट पर इस समय पूरे प्रदेश रे निगाह की श्रोताओं सो टिक रही है इस बार चुनाव कई मायने में किया सो ऐतिहासिक भूने वाले हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश इतिहास में पहली बार धर्मशाला सहित सूबे वे सभी नगर निकाय में के सो महापौर रा चुनाव सीधे 5 साल रे कार्यकाल रे वास्ते किया सो बचू करदा हाशो तो। इस तो पहले हम दसना चाहूँ कि चुनाव की सो 2.5-2.5 साल री अवधि वे वास्ते किया सो बंदे थी है जठेरे कारण पार्षद और समीकरणों में आगे ऐसो बार बार बदलाव हेरने जो मौलदा थो इस नई व्यवस्था था जरी स्थानीय ने सरकार जो स्थिरता इनिया तटीय विकास कार्य जो भी किया स्रोतों सो गति मिलने री उम्मीद बिल्कुल हा। अब सब तो मोटा और दिलचस्प सवाल ये बनु करता हा स्रोतों की धर्मशाला नगर निगम महापौर रेस प्रतिष्ठा कुर्सी पर किया सो कुन विवाजमान बोला। अगर आंकड़े री गणना करिए है ता और आंकड़े री गणित पर नज़र अगर है 500 तो इस समय के आसो बहुमत रा जादुई आंकड़ा पूरी तरीके हो गए भारतीय जनता पार्टी रे पक्ष पर नज़र किया स्वच्छ करता हा। ऐसे में साफ है कि भाजपा ही तय करना हा कि त्यारे पाले वे 11 पार्षद में से कुण भाग्यशाली चेहरा बुना जो महापौर पर महापौर री कुर्सी में बैठना और कुण भाग्यशाली चेहरा बुना जो महापौर री महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किया सो निभाने हैं। भाजपा रे भीतर भी इस समय के सो काफ़ी अटकली चल रही हैं काफ़ी प्रतिष्ठित पद जो पाने वास्ते किया सो मंथन चल रहा मंथन रहा दौरे समय भाजपा परिवार में हा और काफ़ी तेजी हो गई है श्रोतों और जल्द ही इस सस्पेंस था पर्दा किया सो उठने री उम्मीद भी हा श्रोतों। नगर निगम में 50% पार्षद महिला भुने रहे नाते मेयर या डिप्टी मेयर में से 1 सीट किसी भी महिला पार्षद रे खाते में किया सो खिंची सकते हा और मनु करते हैं इनकी भाजपा किसी ऐसे चेहरे जो ये जिम्मेदारी सौंपी सकती है जो निगम रे भीतर हालात पर काबू भी पाई सका। ठेरे अलावा 2027 तो पहले धर्मशाला वे जाति समीकरण रा साधने रा सीआईसी दावा भी किया सो खेलेगा ना हाशो तो। तबे चलिए जी पूरी जानकारी है तुसु तक पहुँचाई हा तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गए और कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 7081889 पर। तो चलिए सोने तो भुंदे माहिया पर ए वो वेरी सच्चे ने बुंदे और अच्छे तो जरूर बुंदे पर सच्चे ने बुंदे हाँ वाकई में ना यार मर्जी रकम ना बोआ था फिर इन्हें सच्चे बंदे ने अच्छे बंदे।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गैन सब बिल्कुल लाइव चल रही है जनाब तो है जरूर जुड़ी सकते हैं। बहुत सारे श्रोता लक्ष्य होता है इस समय उन्होंने कर देना पर जुड़ना भी जरूरी है ताई तो पता लगता है असू ये पता लगता कि गड़ी थो इन है ना और क्या ना तुंदा तो असू ना बाकी जितने भी लक्ष्य होते हैं तीन वो लगता है तो कॉल कर सकते हैं जनाब 7018879 पर नंबर अक मौके फिर यहाँ रिपीट करना तो होगी 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गल है खास ख्याल रहेगी जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर वो। नमस्ते जी।
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं जनाब?
1: तपोवन ते स्वेदो राम।
0: स्वेदो राम जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: स्वेदो राम जी क्या हाल चाल?
1: हाल बढ़िया जी।
0: और चाल?
1: चाल ठीक ठाक।
0: चाल भी बढ़िया।
1: बरखा लगी है लगना।
0: अच्छा क्या बात है। बढ़िया बढ़िया स्वेदो राम जी बढ़िया। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ठीक ने तुंदा आशीर्वाद आ प्यार आ
1: बाकी बढ़िया जी। हां जी नोई ताजी और कोई
0: नोई ताजी बस खबर हुनंदे चल रहे हैं तुसु नोई ताजी हुनंदे चल रहे हैं।
1: अच्छा
0: जी तो ये दसा जी क्या नोई ताजी आ
1: आहा वक्त है कोई खास नहीं नोई ताजी।
0: अच्छा
1: मेरी छुट्टियां है।
0: चलिए जी कुंडली की थोड़ा ना तुसु
1: वो सुनाई दे रंग बिरंगा जहाज
0: रंग बिरंगा जहाज बनाना उड़ने दी करो तैयारी अगली सीटा बाबा जी बैठे पीछे संगत सारी
1: संगत सारी। हां जी हां जी
0: चला ठीक है जी जरूर सुन ले तुसु एक गीत। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो ट्यून कर रहा और इनके अगले श्रोता होगी बिल्कुल कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्कार सचिन जी।
0: नमस्कार जी नमस्कार जी कौन बोल रहे और कड़ी थो बोल रहे
2: हैं? दाड़नू थो बोलू पंडा जी हर सिंह जी।
0: दाड़नू थो हर सिंह जी।
2: हाँ जी
0: और ठीक ने दानू वाले सब?
2: सब ठीक हैं जी।
0: कर करे लगुरन?
2: बस करा लगना अपने अपने कम में लगुरे दुप बड़ी बारी
0: दुपता हर सिंह जी दुपता।
2: हाँ जी
0: दुपता काफी ज्यादा हो तुम्हारी आवाज कुछ ही डेली डेली लगो कर दे क्या गल बीमार इन
2: कुछ बुखार है।
0: ओहो ये अबे एकदम है ठंडा ठंडा करो कर दे ना जनाब।
2: हाँ जी हाँ जी
0: मुझे लगता कि टेरी वजह है दिक्कत।
2: हाँ जी
0: घर परिवार तो ठीक है ना खुश तो है तो
2: दोस्त जी ठीक है जी सब ठीक है सब।
0: अच्छा चलिए तो है बुखार बंदे बंदे भी तो है कॉल मिलाया इस कार्यक्रम में
2: हेलो मते दाड़े हुए आज कॉल कर ही लंदे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये तुंदा प्यार ही था ये तुंदा आशीर्वाद ही था जी। जी हर सिंह जी कौन देने गीत सुनना पसंद कर ले?
2: गीत सुनना माता रब सुनना तल्ले आली माता कमल नारी है गुरु है।
0: अच्छा ओ माता मन मेरा रहंदा दुखा बिच कुछ दे दे बोल इन इस गीत रे है ना।
2: हां जी हां जी हां
0: ठीक है जी जरूर सुन ले तू सो गीत है।
2: धन्यवाद जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जनाब धन्यवाद धन्यवाद। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन त्रिगुंसो की तो बन रहे और आइए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़न देना है और कार्यक्रम मन जो धीरे धीरे फरमाइश और दौर के सो भी पूरा करते चलते हैं। श्रोता अब फरमाइश और दौर के सो पुस्तकें पहुँचंदेन अगली फरमाइश।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम हिंदी अपनी का पकन ऐसा चल रही इन श्रोता हूँ। आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगु है बढ़ंदे हिन्न और बिल्कुल अगली फरमाइश तो सब दे सकते हैं इस नंबर पर 7018887091 पर नंबर आक मौके फेरे 7018887091 पर तो है श्रोतागण सो अगली फरमाइश दे सकते हैं कॉल कर सकते हैं। बहरहाल ऐ चलते हैं थोड़ा करी और हगों की श्रोतों सो बढ़ दहन और भारत रहा सभियों लंबा न्यूजीलैंड दौरा बुना 22 अक्टूबर तो पहले दिसंबर तक 12 मैच भी सीरीज के सो इंडिया वाले खेलनी है इन श्रोतों है ना जी। और T20 विश्व कप में शिफाली और मेरी भूमिका बेहद अहम की श्रोताओं से रहने वाली है। बहुत सारी और जानकारी नक सोशल मीडिया पर की श्रोताओं से तुसे हेरे बुना की सो वायरल बच्चु करती है रील न जाने हाँ वेस्ट बंगाल रही है रील हाँ वेस्ट बंगाल रही खबर है माफ़ कर रील माँ किया सो खबर इच्छु करती है कि अक्की मोए किया सो अपना 1.5 साल रहा बच्चा किया सो मतलब सारा एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर तो था तह सो बच्चा किया सो मारी था। अब इन्हें जाने कजो कि मतलब सब रिश्ते के सो खराब हो सकते हैं सब रिश्ते के श्रोताओं सो टूटी सकते हैं बिखरी सकते हैं है ना। कोई भी रिश्ता किया सो कहने भी तस रिश्ते थो इंदा विश्वास टूटी सकता है तसी हो गया है कहने बंद कर सकते हैं रिश्ते टूटते ही रुए है बिखरते ही रुए है जुड़ते भी रुए ने लेकिन ये आला सिस्टम ये आला जो माप ये जो मैप है सच में मैं भी समझता हूँ बार कि अकमा ऐसा तो ना कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक खबर है कि इन्हें सोच चुंदी लेकिन ये वेस्ट बंगाल री खबर इच्छू कर दी हिन कि ये करे कि यार सो सिस्टम हुआ तो एक और जानकारी है कि इस बार जो है होने भी थी कि चाचे की या सोने वाले कोड़े स्कूल लोग इच्छू कर दी थी और ग्रां रहा सो चाचा तोता हो किंग करी करी किया सो कर खा स्कूल मतलब अनजान रोड में ले करी किया सोता होगी छेड़खानी करी है ना। तब है मतलब हेरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो अभियान बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन कड़ी नींदी कोई सुरक्षित तो हेरा मुझे तो लगता है कि इन्हें जो पहले तास वो सेल्फ डिफेंस की सो सिखाना पड़ना है ना थोड़ी कह रही कुली के सो फाइटर बन और मुझे लगता है कि कोई ना कोई गेम के सो कुली अंदर भी ज़रूर हुआ ताकि सो थोड़ी करी फाइटर के सो ज़रूर हुआ कजो कि आजकल जो दविंदगी अमनु अंदर सो बेहिसाब रही दविंदगी की सो भर रहे तो एक किसी पर विश्वास ना कर सकते हैं है ना। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि किसी पर बिना मतलब अपने फैमिली अपने रिश्तेदार तो बुनते हैं लेकिन ये जो मतलब अब क्या बोल सकते ना है इतनी पर टिप्पणी कर ही ना सकते अब कुछ ग्राई भी बहुत अच्छे बुनते हैं अपने सके थे ज़्यादा सभी मनते हैं है ना कुछ घरियाँ कुछ रिश्तेदार भी बहुत अच्छे बुनते हैं जो सके हों ज़्यादा मनते हैं लेकिन ये मतलब सिर्फ विश्वास रहे रिश्ते हैं श्रोताओं। बहरहाल इन श्रोता का ना सो कि कनेक्टेड हैं नमस्ते जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी जनाब नमस्कार
1: नमस्कार सज्जन जी
0: नमस्कार जी नमस्कार क्या हाल चाल
1: बहुत बढ़िया बरखा लग रही
0: अच्छा बरखा लगी पी रही
1: हाँ जी बरखा लग रही दाढ़ी
0: अच्छा
1: ओ ठीक ठाक ना
0: हाँ जी ठीक ठाक तो है बल्ला ठीक ठाक ना
1: बहुत बढ़िया
0: अच्छा तो मौसम में ठंड पाई थी मेरी है ना जी
1: हाँ बरसा लगी है
0: ये तो धर्मशाला जींदा
1: धूप भी लगू रही ना
0: हाँ जी
1: तो बरखा भी लगू रही
0: ये तो धर्मशाला बन देना और कति बन देना हाँ
1: जी
0: अच्छा ता इडी भी लग रही इधर, इडी भी लग रही जी, सिद्ध बाड़ी भी लग रही बरखा, मिलू सिद्ध बाड़ी भी लग रही बरखा जी। हाँ
1: अच्छा सिद्ध वाड़ी भी लग रही
0: जी, हाँ जी,
1: ठीक है बढ़िया। और लग रही था वो मुझे अच्छा था, ठीक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। कुंडे ने की थोड़ा जनाब तुसू,
1: अस्सी बकरी 84 भेड़। हाँ
0: भेड़ जी,
1: जी पुराना गाना है। हाँ
0: जी,
1: जी
0: ये गाना जी, अस्सी बकरी 84 भेड़ वो महाजना,
1: हाँ
0: नौ
1: जी
0: सौ
1: क्या
0: पालनो बणू र तेरी सो। हाँ
1: बात है, तो
0: जी,
1: ऐसा माहौल ही लाइट थी।
0: एरा है मौज मारंद और मौज लाना, मौज लाना सुगुरा सु रोन का लाना इंदा काम में जनाब।
1: हाँ जी हाँ जी बड़ा मजा आंदा सुनती गप्पा जी ना। हाँ
0: हाँ जी,
1: जी ठीक
0: चलिए जी, बहुत धन्यवाद है, तुंदा प्यार आशीर्वाद है जी।
1: है जी, धन्यवाद। ठीक
0: ठीक है जी जनाब, जरूर होना ले इस गीता जो
1: है जी ठीक।
0: FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और जानकारी पिटारा की श्रोतों सो ये चलते रहना, आइए लेके चलते तू सब भी जो अब इस गीतारी किनारी बनी रहा, आरजे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने पन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর বেড়িগঞ্জন ধারমশালা তো ऐसा বি টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন দি আপনি গপ গেন সো বিলকুল লাইভ চল রই তিন দে রেডিও সেট মা জনাব তো সব কল করি সকদে না আপনা পছন্দিদা গীত হনি সকদে হিন বল দে না কি সিচুয়েশন জেসি মর্জি ভোয়া হালাত জেসি মর্জি ভুন ইনসান জো গিয়া সু খুশ রহনা চিন্তা আর খুশ রহনা চিন্তা আর তন্দুরুস্ত রহনা চিন্তা শত হানা হালাত জেসি মর্জি ভুন আর इति पर है कि बलदे ने कि शख्स जो कोई गिरा ही ना सकता जिन्हें चलना ही किया सो ठोकरा थो सीख रो बो है ना जैसे इंसान ने स्टार्टिंग थो स्ट्रगल हेर रही बो स्टार्टिंग थो सो और मुझो स्टार्टिंग सो चीज़ वास्ते तरस रो बो और तस्यो चीज़ अगेन सो मुलदी मुनता सो इंसान इंसान जो गिराना बड़ा मुश्किल है तस इंसान जो गिराना बड़ा मुश्किल है और अशोतो फिलहाल इन द अगले श्रोता सूगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी।
1: हाँ जी हाँ जी मैंने गाना सुना था।
0: हाँ जी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन।
1: ए बागिया फूल खेड़े या बखेड़े या लाल रंग दा।
0: हाँ जी कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन जनाब।
1: सिद्धवाड़ी तो
0: सिद्धवाड़ी तो क्या ना ची तुम दा
1: रिंपी।
0: हाँ जी
1: रिंपी देवी।
0: रिंपी देवी।
1: हाँ जी
0: रिंपी देवी जी आप मौके फिर जो गीत हो बल्लू तसी हो फिर दस गुण दिन गीत है।
1: हाँ जी फूल खिलिया खिलिया लाल रंग दा।
0: फूल खिलिया खिलिया लाल रंग दा।
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी धन्यवाद। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और सोमवार तक भुने हाँ अगली जानकारी तुम होने कि सोमवार तक भुने जिला परिषद और बीडीसी भी शपथ जी बिल्कुल श्रोतों जिला पार्षद शपथ शपथ किया सो डीसी बीडीसी भी एसडीएम एसडीएम आ करवाने हैं और पंचायत वास्ते हले सीएम साहब रे फैसले वगैरह सो इंतजार है हिमाचल में पंचायती वाद

संस्था वे चुनाव वे पद अबे शपथ ग्रहण जो लेकर की आसो स्थिति साफ भुना लगे हर्षतों। जिला परिषद और बीडीसी भी बीडीसी रे वास्ते शपथ समारोह शपथ किया सो सोमवार जो 8 जून तक किया सो करवाए गाने हाँ। ये नियम माही प्रावधान हा कि रिजल्ट घोषित भुने थो अक हफ्ते माँ के सो शपथ भुना चेंदे हा। इसी अनुसार शिमला माँ 6 जून जो और कांगड़ा व लाहौल स्पीति माँ सोमवार भी तारीख की सो तय भोया सो तो बाकी जिला माँ भी शेड्यूल किया सो बनो करता हा। जिला परिषद रे वास्ते की सो शपथ डीसी दलाने हा और बीडीसी भी शपथ किया सो एसटी माँ करवाने हा। सो तो ग्राम पंचायत प्रधान और उप प्रधान जो मुख्यमंत्री विशेष कार्यक्रम माँ शपथ किया सो तिन्या दलाने हा। जबकि पंचायत वार्ड सदस्य जो संबंधित पंचायत रे प्रधान शपथ तिन्या दलाने आशो तो जड़ तक पंचायत रे गल आता चुने गए 31,182 ने जनप्रतिनिधि रे शपथ ग्रहण पर सरकार रे फैसले रे इंतजार किए सो करू कर देन। विभाग की ऐसो फाइल मुख्यमंत्री जो भेजी दी तुरे हा। सीएम में की ऐसो सीएम रे कर्नाटका थो वापस इने थो बाद गए सो तारीख तय बोने हैं जनाब। सीएम साहब कर्नाटका को चूरे फिलहाल। इस तो पहले भी गल भोया श्रोता हूँ कि शपथ राज्य व त्राई मंडला माँ यानी कि धर्मशाला मंडी और शिमला माँ के आसो भोने हाँ। कई बार सभी जो शिमला अधिकारी शपथ करवंदन पंचायती राज विभाग के आसो सभी परंपरा और खर्चेरा कुवैत हाँ मतलब पूरा ध्यान किया सो रुक रहा है ना जनाब। तब एक दिन अली सीएम साहब जो कि सो वापस इन्हें दे सो तो तत्म बाद ये सो तीन तारीख तय करनी है प्रधान उप प्रधान वास्ते। बाकी मेदसी तक ही जो पार्षद बन रहे न जो माफ कर जो परिषद हैं जो बी डी सी हैं इन्या किया सो यारे बुझ गए पार्षद री शपथ डी सी और बी डी सी भी शपथ के सो एस डी कराने हाँ। तो बहरहाल जनता फैसला लियो रहा अब जनता कस हिसाब हो कि क्या फैसले लियो रहे जनता पर निर्भर करता है और हर कोई अपने ग्राम वास्ते कि सो ये सोचता कि ग्राम उन्नति रही और बड़ा सो मूलभूत सुविधा क्या न सो मुड़ेगान यह सब यही चाहते हैं मे भी है ना। तो बाकी खबर अके भी आई थी मुंजो ले उड़दी उड़दी मुंजो कस की दसी थी कि इंजा पंचायती इलेक्शन में किया सो जो आदर खादर बंदी सो खुली चल रही थी आदर खादर किया सो खुली चल रही थी और ठेरे चक्र अंदर किया सो कुछ मनु क्या बल्लू कर देन कुछ क्या बल्लू कर देन। चलो अब ये तथ्य जो बुना थो सो बली था जो जिसेरे मथे में वास तिलक थो सो लगी गोआ तब इत पर टिप्पणी ता है ना कर सकते हैं छो तो। बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं तो सो फरमाइशा री किनारी फरमाइशा बड़ी ना सुले ये फरमाइशा जो कर लेंदेन छो तो पूरी है भाई।

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेल्डी गुंजन धर्मशाला तो सब भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी का पगा एंसो चल रही तो वीडियो सेट पर बिल्कुल लाइव और शोतो वक्त बुझेगो तो सभी तो अलविदा लेने वा तुसु सभी टाटा बाय बाय बलने रहा और गंदे गंदे बसे बलना चाहो तुसु सभी जो कि एनवायरमेंट जो साफ सुथरा रखा पर्यावरण जो किया सो साफ सुथरा रखा घट तो घट प्लास्टिक रा यूज किया सो करा और इसी सो के श्रोताओं में बोलना चाहो कि माँ बाप री सेवा किया सो हमेशा करा तुसु मंदिर गाने रा समय लगा ना लगा लेकिन अपनी मम्मी जो अपनी माँ जो अपने फादर साहब जो किया सो जरूर खुश रखा तंदुरुस्त रखा और जो अपनी साइड सो बुझे सकता ना जितना बुझे सकता श्रोताओं उतना करा त्यारा आशीर्वाद त्यारे सच्चे मना होगी तुंदे अगर खुश मना होगे और सच्चे मना होगे तुंदे मुंडा पर त्यारा हाथ फेरेगो ना तो सो खरबर भी है खर्च कर कर भी सो वाला सुकून किया सो तुसु ना मोलना शोतो तम सचिन कपूर ले लेनो तुसु थो इजाजत इन्या शब्द थो मुंदेन शोतो तो नमस्ते धर्मशाला।

समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत व 53 देशों पर 12.5% अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव। महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना। ब्रिक्स देशों के सामने चमका हिमाचल का आपदा प्रबंधन मॉडल। एंट्री टैक्स का विरोध तेज, पंजाब सीमा पर हिमाचली गाड़ियों से वसूला खालसा टैक्स। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता एक और जहां अंतिम चरण में है, वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने बुधवार को धारा 301 के तहत की गई 60 जांचों के निष्कर्षों का खुलासा किया, जिसमें भारत के साथ साथ 54 देशों पर 12.5% अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, जो जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालय स्तर पर विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है, जिससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की भाषा दक्षता प्राप्त होगी और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ओडिशा के पुरी में आयोजित द्वितीय ब्रिक्स तकनीकी बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने भौगोलिक सूचना तंत्र आधारित शहरी आपदा प्रबंधन एवं शहरी लचीलापन मंच का प्रस्तुतीकरण किया। इस प्रस्तुति ने ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब हिमाचल सीमा पर लगाए गए एंट्री टैक्स और टोल नाकों के विरोध में आंदोलन कर रहे शिरोमणि जनरल साहिबजादा बाबा जुझार सिंह निहंग सिंह खालसा दल ने बुधवार को कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना समानांतर खालसा एंट्री टैक्स नाका लगा दिया। बाबा अक्षर सिंह महाकाल की अगुवाई में बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये खालसा राज टैक्स अभियान चलाया गया। इस दौरान हिमाचल की ओर से पंजाब में आने वाले वाहनों को रोक कर प्रतीकात्मक पर्चियां काटी गयी। ये टैक्स फिक्स नहीं था, वाहन चालकों ने अपनी श्रद्धा अनुसार 10, 20, 50 या 100 रुपए की सहयोग राशि दी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक जिले कांगड़ा में पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने बताया कि जिला परिषद के नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को आयोजित किया जाएगा। इस औपचारिक प्रक्रिया के तुरंत बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे लेकर जिले का सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग हिमाचल की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है। सभी प्रतिबंध हटाने से अब विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के तबादले और नियुक्तियाँ भी हो सकेंगी। हिमाचल में वर्ष 2016 से पहले बने होटल और रेस्टोरेंट समेत अन्य कमर्शियल भवनों को अब फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड की शर्तों को अब लागू नहीं किया जाएगा। ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके बाद अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग रूल्स में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से बुधवार को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को उनकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों का परिणाम मानी जा रही है। लाहौल एवं स्पीति जिले की ग्राम पंचायत शांशा ने सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक सुरक्षा युक्त पंचायत श्रेणी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया।
हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं एक साथ दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस संबंध में सरकार के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कई बड़े बदलाव के बीच अब बोर्ड की कक्षाओं की सभी परीक्षाएं एक साथ करवाने को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक मशीनों पर नियमित उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ साथ स्वयं भी प्रतिदिन बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में आने तथा जाने के समय फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक टर्मिनल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए मास्टर्स और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के अनुसार ये प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के स्कोर के आधार पर किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन PG 2026 तथा AICE JRF SRF परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। हिमाचल प्रदेश सर्व DGT महासंघ ने जनगणना कार्य के लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा अन्य विषयों के TGT अध्यापकों की लगाई जा रही ड्यूटी का कड़ा विरोध जताया है। महासंघ का कहना है कि अध्यापकों का मूल दायित्व छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है तथा उन्हें लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने से विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा लोक मित्र केंद्रों, साइबर कैफे या फिर आवेदक स्वयं www.hpsbys.in वेबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर बनवा सकते हैं। 1 जून से लेकर 30 जून तक ही नया कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में संपन्न चुनाव वाले चारों नगर निगमों सोलन, मंडी,

0: धर्मशाला और पालमपुर में मेयर पद को 5 साल के लिए अनारक्षित कर दिया है। शहरी विकास विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। ये आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 एवं नगर निगम चुनाव नियम 2012 के तहत जारी किया गया है। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार जल्द ही 714 पीजीटी और 102 डीपीई पदों पर एलडीआर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 1131 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां पहले ही एलडीआर श्रेणी के माध्यम से की जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 13 जून को होने वाले भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री 5 जून से शुरू होने की संभावना है। एचपीसीए सचिव मनोज शर्मा ने बताया कि टिकट बिक्री की प्रक्रिया और मूल्यों को अंतिम रूप देने के लिए बीसीसीआई के साथ जल्द बैठक की जाएगी, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे या ऑफलाइन। इस मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 3 नए जजों के नाम तय कर दिए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा चिराग भानु सिंह, हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भूपेश शर्मा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

ये शाम खूबसूरत है, ये धर्मशाला की हवाएं खूबसूरत हैं, ये धर्मशाला की फिजाएं खूबसूरत हैं, इसीलिए इसको धर्मशाला कहा जाता है। क्योंकि अभी जितने भी लोग धर्मशाला में रह रहे हैं उनको पता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं, यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं, यहाँ का नहीं है कोई थौर, और मेरा धर्मशाला का मौसम है इतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत अभी इस समय कहीं और का मौसम नहीं होगा, इतना खूबसूरत कहीं और का मौसम जो है वो नहीं है इतना खूबसूरत। जी बिल्कुल, नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम सचिन कपूर है, मैं आप सभी का हारजे हूँ, वीडियो जोकी हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ, और आप मेरे साथ यूं ही बने रहेंगे 8 बजे तक कार्यक्रम में। आप सभी जानते हैं बखूबी जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लेकिन जो नए लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त उनको बताना चाहूँगा, कार्यक्रम में आप जानकारियों का पिटारा जो है वो भी सुनेंगे, कार्यक्रम में आप गीत संगीत का पिटारा खुलते जो है वो भी सुनेंगे, और अन्य और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको कार्यक्रम के दौरान पता चलेंगी। श्रोताओं, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का नाम है, ये वाकई में ही धर्मशाला है। मुझे, मेरे पास शायद शब्द नहीं है इस समय इस क्लाइमेट को लेकर, इस मौसम को लेकर मैं क्या शब्द बयां करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या शब्द मैं आपके रेडियो पर रखूं, मुझे वाकई में ही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इस समय जहां तपती धूप है, जहाँ अन्य सभी शहर जो हैं वो अन्य सभी अन्य सभी शहर जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं गर्मी से, कहीं ना कहीं 40 to 45, 50 जो है वो टेम्परेचर है, वहाँ इस समय धर्मशाला का 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है। श्रोतों, जी बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, 19 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस समय धर्मशाला का तापमान है। श्रोतों, तो आप सोचिए कि हम कितनी ही प्यारी जगह में जो है वो रह रहे हैं, आप सोचिए कि हम कितनी ही खूबसूरत सी जगह में, कितना खूबसूरत ये क्लाइमेट है यहाँ पर हम रह रहे हैं। श्रोतों, जी बिल्कुल, इस समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और नमी की बात की जाए तो नमी इस समय जो है वो श्रोताओं 60% से ऊपर है। हल्की बारिश जो है वो बिल्कुल हो रही है, लेकिन इस समय मैं अंदर हूँ, शायद बारिश तेज़ भी हो सकती है। हाँ, बारिश तेज़ भी हो सकती है श्रोताओं, और बिजली भी हल्की फुल्की जो है वो बिजली भी जो है वो चमक रही है। तो ये समय धर्मशाला का टेम्परेचर है श्रोताओं, 19 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, कल की बात करें तो कल शायद फिर 23 और 24 तक जो है वो टेम्परेचर जा सकता है श्रोतों, और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये धर्मशाला है, सबसे अलग है, सबसे खूबसूरत है, और यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं सबसे खूबसूरत हैं, ये धर्मशाला है, इसलिए मैं बार बार अपने धर्मशाला की तारीफ करता हूँ श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ FM बैंड 91.2 MHz पर, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ।

0: बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन पर, और छाया है जो दिल पे नशा। हाँ वाकई में ही नशा, तुम बहुत प्यारा सा गीत था ये, और दिल है तुम्हारे मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोताओं। कविता कृष्ण मूर्ति और शान की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आपने सुना वेड़ी गुंजन पर। आइए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। तो श्रोताओं कहते हैं, हमारे जीवन में क्रोध और आंधी, ध्यान दीजिएगा ज़रा, हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का जो है वो पता चलता है श्रोताओं, कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। जिस तरह से आंधी आती है और आंधी सब तहस नहस कर जाती है, बहुत सारा नुकसान जो है वो कर जाती है, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, काफ़ी ज़्यादा तहस नहस जो है वो कर जाती है। लेकिन यही हाल हमारे मानव जीवन का भी है। गुस्से में हम न जाने किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, गुस्से में हम न जाने किस लिहाजे में बात कर रहे हैं, गुस्से में हम न जाने किस रिश्ते को जो है वो बिगाड़ रहे हैं, क्रोध में हम न जाने क्या ही अपना नुकसान जो है वो कर बैठेंगे, ये किसी को भी नहीं पता। कि और पता तब चलता है जब क्रोध शांत हो जाता है, पता तब चलता है जब आंधी चली जाती है, जब गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। इसलिए श्रोताओं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, अपने गुस्से को जो है वो काबू में रखें, और कोशिश करें कि गुस्से में कभी कहीं कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो ना जाए, है ना जी। आइए तो लेके चलते हैं आप सभी को इसी के साथ इस प्यारे से गीत की ओर।
1: ठीक है,
0: बने रहिएगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

शोध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आपके अपने आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर के साथ। आइए जी चांद से पर्दा कीजिए, है ना, बिल्कुल कीजिए क्योंकि चेहरे का नूर ही तो सब कुछ बयां करता है। तो बहुत प्यारा से गीत था, आओ प्यार करें मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतों, और कुमार शानू की आवाज़ में आपने ये गीत सुना वेड़ी गुंजन पर। इसी के साथ बढ़ते हैं श्रोतों थोड़ा सा और आगे और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम में इस बार महापौर, मेयर और उप महापौर, डिप्टी मेयर का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होने जा रहा है श्रोतों। अब तक इन पदों पर आरक्षण को लेकर चल रहे तमाम कयासों और अटकलों पर पूरी तरह से विराम जो है वो लग चुका है। नई व्यवस्था के तहत इस बार चुनाव में किसी भी वर्ग के लिए जो है वो कोई विशेष आरक्षण लागू नहीं होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अब किसी भी वर्ग से जो है वो महापौर और उप महापौर का चयन किया जा सकेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही धर्मशाला की हॉट सीट पर इस समय पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है श्रोतों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार धर्मशाला सहित सभी नगर निकायों में महापौर का चुनाव सीधे 5 साल का कार्यकाल के लिए जो है वो किया जाएगा। इससे पहले तक ये चुनाव जो है आप सभी बखूबी जानते होंगे ढाई ढाई साल की अवधि के लिए जो है वो करवाया जाता था श्रोतों, जिसके कारण पार्षदों और समीकरणों में बार बार जो है वो बदलाव देखने को मिलता था। इस नई व्यवस्था से जहां स्थानीय सरकारों में स्थिरता आएगी, वहीं विकास कार्य को भी जो है वो कहीं ना कहीं गति ज़रूर मिलने की उम्मीद है श्रोतों, ऐसी आशा हम लगा बैठे हैं। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये बना हुआ है कि धर्मशाला नगर निगम में महापौर की इस प्रतिष्ठित कुर्सी पर जो है वो कौन विराजमान होगा। अगर आंकड़ों की गणित पर हम नज़र डालें श्रोतों, तो इस समय जो है वो बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर नज़र आ रहा है। ऐसे में ये साफ है कि भाजपा ही तय करेगी कि उसके पाले के 11 पार्षदों में से किस भाग्यशाली चेहरे को महापौर और उप महापौर की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। भाजपा के भीतर भी इस प्रतिष्ठित पद को पाने के लिए जो है वो श्रोतों मंथन का दौर मैं कहूँगा तेज हो चुका है, और जल्द ही इस सस्पेंस से जो है हम चाहते हैं कि पर्दा भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जल्द से जल्द उठाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नगर निगम में 50% पार्षद महिलाएं होने के नाते मेयर या डिप्टी मेयर में से एक सीट किसी महिला पार्षद के खाते में जो है वो जा सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा किसी ऐसे चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपेगी जो निगम के भीतर हालात पर काबू पा सके। इसके अलावा 2027 से पहले धर्मशाला के जातीय समीकरणों का साधने का सियासी दावा भी खेला जाएगा श्रोतों।

इस प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने रहेगा आपके अपने आरजे सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतोफेम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी जो है वो आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है होप सो अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। खुश रहना मैं अक्सर कहता हूँ बहुत ज़रूरी है और बार बार कहता हूँ, क्योंकि आजकल ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना श्रोता, तो हम खुश रहना ही जो है वो भूल जाते कि किस तरह से हम खुश रहें। चलिए तो अगली जानकारी की ओर लेके ज़रूर जाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है श्रोतों एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं आपसे छोटे से अंतराल के बाद।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बार बार कहता हूं तो रहा भी करो श्रोतो। चलिए इसी के साथ लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। श्रोतो, 8 को जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे जिला परिषद सदस्य। शतों प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक जिला कांगड़ा में पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के पद पर जो है वो आप सभी को पता है कि सीआईसी पारा पूरी तरह से गर्मा गया है। इस पद के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज फैरवा ने बताया कि जिला परिषद के सभी वार्डों से जीत कर आए नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आगामी 8 जून को आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं श्रोतों, और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी विजेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस औपचारिक प्रक्रिया के तुरंत बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी श्रोतों, जिसने जिला के राजनीतिक में हलचल जो है वो तेज कर दी है। कांगड़ा जिला परिषद की सत्ता पर कब्जा होने के लिए जो है वो कुल 54 जो वार्डों की लिहाजे से किसी भी दल को जो है वो 28 पार्षद के बहुमत की आवश्यकता है ना जी। 54 में से जो है 28 पार्षदों की बहुमत की जो है वो आवश्यकता है। 3 चरणों में हुए इन चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं श्रोतों, उन्होंने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है, बेहद दिलचस्प जो है वो बनाकर रखा भी है। इस समय चुनावी नतीजों में भाजपा ने 26 सीटें, यानी कि 2 सीटें कम है भाजपा को, 26 सीटें जीत कर सबसे बड़े दल के रूप में जो है वो उभरी है श्रोतों, और बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पास उनकी अपनी ही पार्टी के 8 बागी भी जीत कर आए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 14 का आंकड़ा है और कांग्रेस के 2 बागी जीत कर आए हैं। इसके अलावा 4 निर्दलीय हैं। कांग्रेस की निगाहें भाजपा के बागियों और निर्दलीय सदस्यों पर हैं श्रोतों, और तीखी निगाहें हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद से ही भाजपा कांग्रेस दोनों ही खेमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर जो है वो काफ़ी मंथन हो रहे हैं श्रोतों, और काफ़ी रणनीतियां जो है वो बन रही हैं, काफ़ी रणनीतियां जो है वो ये जोड़ तोड़ का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है श्रोतों, यानी कि अपनी अपनी ताकत, अपने अपने लाइजन जो है वो लगा रहे हैं, अपनी अपनी ताकत जो है वो लगा रहे हैं। इस समय भाजपा 2 सीटों से जो है वो पीछे है श्रोतों, उनके पास अपने ही 8 जो हैं वो बागी हैं। अब देखते हैं वो 8 बागी अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो खेल कुछ भी हो सकता है, इस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे। वक्त जो भी फैसला लेगा या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे श्रोतों, वो उन पर निर्भर करता है, शीर्ष नेता जो भी फैसला लेंगे। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और हम आपको लेके चलेंगे। कहते हैं हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आता है ना। जान तेरे नाम फिल्म से लिया गया यह गीत है, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज में हम सुनेंगे ये प्यारा सा गीत आपके अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। बने हुए हैं आप सभी सचिन कपूर के साथ।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। तो आइए जी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत प्यारा सा गीत आपने अभी सुना, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा आता है। स्मार्ट सिटी की दीवारों पर उभर रहे हैं हिमाचल के रंग शोतों, जिला मुख्यालय व स्मार्ट सिटी धर्मशाला को और अधिक सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए शहर में दीवारों और सार्वजनिक स्थलों को रंगों से सजाने का कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है। शोतों वेस्ट वॉरियर व नगर निगम धर्मशाला के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर वॉल पेंटिंग और रंग रोगन का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता में नया निखार देखने को मिल रहा है। शोतों धर्मशाला के अपर बड़ोल के बहने वाले एसी कलाकृत में जुड़े कलाकार मेघराज द्वारा पुलिस लाइन क्षेत्र में वेस्ट वॉरियर के तहत आकर्षक वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति वॉल पेंटिंग 5,000 रुपये जो है वो दिया जा रहा है। श्रोताओं वही शहर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा बोर्ड के समीप स्थित वाटिका में हिमाचल की संस्कृति को दर्शाते हुए एल्युमिनियम से बने मानचित्रों और उनके पीछे बनी पहाड़ी श्रृंखला को रंगों से सजाया जा रहा है। बता दें कि नगर निगम के माध्यम से ये कार्य कलाकार हर्ष और गौतम को सौंपा गया है। श्रोताओं

दोनों का लगातार पिछले एक सप्ताह से लगातार इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। हर्ष ने बताया है कि लगभग 600 वर्ग फुट क्षेत्र को रंगाना नगर निगम ने लक्ष्य रखा है, जिसमें 400 वर्ग फुट से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शीर्ष काम आज जो है वो लगभग पूरे होने की उम्मीद है श्रोतों। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पहले बिना रंग के ये कलाकृतियाँ स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब रंग रोगन के बाद इनकी सुंदरता निखर कर सामने आ रही है। इसके चलते पर्यटक यहाँ रुककर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और स्थानीय लोग भी इस बदलाव को पसंद कर रहे हैं और इस बदलाव को देखकर काफ़ी खुश हैं। कलाकारों का कहना है कि धर्मशाला जैसे खूबसूरत पर्यटन शहर को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में भी इसी तरह की पेंटिंग और सौंदर्यकरण का कार्य जारी है। नगर निगम और वेस्ट वॉरियर्स के प्रयासों से धर्मशाला को पर्यटकों की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं श्रोताओं। जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ। मौसम काफ़ी रंगीन है श्रोताओं, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस

श्रोताओ एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, कसम खा के कहो। जी बिल्कुल, कसम खा के कहो। तो चलिए जी, कार्यक्रम को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। दिल है तुम्हारा मूवी से लिया गया ये गीत है। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में हमने ये गीत सुना श्रोताओं। तो इस समय मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, धर्मशाला में इस समय जो है वो बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। यानी कि अगर इस तरह से बारिश कंटिन्यू लगी रही तो मुझे लगता है कल सुबह तक हमें जैकेट्स जो हैं या स्वेटर्स जो है वो वेयर करनी पड़ेंगी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा मौसम जो है वो इस समय धर्मशाला में हो चुका है श्रोताओं। और ये ख़ास बात है हमारे धर्मशाला की, ये यहाँ के क्लाइमेट की बड़ी ख़ास बात है श्रोताओं, और ये ख़ास बात तो है ही है चलिए जी, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का पिटारा यूँ ही चलता रहेगा श्रोताओं, साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा भी। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शो तो बहुत प्यारे से गीत आप सभी ने सुना एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है, साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

तो गूंज अपने पन की तो रहनी चाहिए। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं सचिन कपूर आपके साथ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को मिले 3 नए जज। श्रोताओं जी बिल्कुल, देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश के 3 जिला न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट के जज के तौर पर जो है वो नियुक्त करने की सिफारिश की है। श्रोताओं, इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांगड़ा चिराग भानु सिंह, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल भूपेश शर्मा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल शामिल हैं। श्रोताओं, तो जानकारियों का पिटारा यूं ही धीरे धीरे जो है वो श्रोताओं खुलता रहेगा। इसी के साथ एक जानकारी, हाँ, कांगड़ा की जानकारी, कांगड़ा में चिट्ठी की जानकारी जो है वो आई है और यह सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी को। आप सभी इस जानकारी के साथ रूबरू हों श्रोताओं। तो चिट्ठा देखिए, जो चिट्ठा तस्करी है नेटवर्क का भंडाफोड़, कांगड़ा में चिट्टा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। श्रोताओं जी बिल्कुल पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन नया सवेरा के तहत, ऑपरेशन का नाम है नया सवेरा के तहत, जिला के सक्रिय एक संगठित चिट्टा हीरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रोताओं, मुख्य सरगना जलंधर निवासी अभिषेक सहूता को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रोताओं, जो कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश सहित जिला कांगड़ा के चिट्टे की तस्करी कर रहा था। श्रोताओं, इसके लिए उसने ज़िला में अलग अलग स्थानों पर काउंटर भी बनाए थे जिनके माध्यम से चिट्टे की सप्लाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें नशा तस्करों की ओर से गूगल मैप से वीडियो रिकॉर्ड कर मुख्य सप्लायर की ओर से ग्राहकों तक पहुंचाने की तकनीक अपनाई गई थी। कार्रवाई के दौरान कुल 166.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है, जबकि एक मालवाहक वाहन और 14 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब से नशा की खेप लाकर विभिन्न काउंटरों तक पहुंचाते थे ये लोग। जांच के दौरान पुलिस ने वित्तीय लेन देन की भी जो है वो पड़ताल की। पिछले एक वर्ष में करीब 80 लाख रुपए के लेन देन का पता जो है वो चला है। तो सोचिए श्रोताओं, आप 80 लाख रुपए का लेन देन का जो है वो पता लगा है लगभग पिछले एक वर्ष में। अब मुझे इस बात का सच में आपके साथ शेयर करने का, मतलब जो मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे जितने भी वेड़ी गुंजन को सुन रहे हैं, बहुत गणमान्य लोग हैं, है ना, बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, अगर आपको सही लगे तो ज़रूर इस पर आप भी टिप्पणी भी कर सकते हैं आप, और मुझसे मिल भी सकते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, शायद मुझे ये लगता है कि जो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जितने भी जो धर्मशाला में रोज़गार है, चाहे वो मॉल में है, चाहे वो कहीं स्कूल में है, चाहे वो कहीं अन्य एनजीओ में है, या चाहे वो किसी भी जो है वो कहीं भी जो है वो कार्यरत है ना, जो भी यंगस्टर है जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, हिमाचल में नो डाउट कि टूरिज़्म को लेकर पैसा है, होटल में लगे हैं, होटल में जो लगे हैं, है ना, फैक्ट्रीज तो है नहीं यहाँ पर, दुकानों में जो लगे हैं, आई थिंक 8-10, बहुत ज़्यादा 12-14, या इतना ही, मतलब 15 भी, शायद 15 रख लीजिए आप, जिन जिन प्लेसेस की मैंने बात की है 15 भी बहुत ज़्यादा, हाँ 20, मतलब हो सकता है 15 से 20 के बीच में जो है वो यहाँ पर मतलब रोज़गार हो, लेकिन दुकानों या फिर किसी भी ऐसी जगह तो मुझे लगता है 10-12 जो है वो एक
वैल्यूएबल अमाउंट तो नहीं कहेंगे कि हाँ चलता है। तो मुझे लगता है कि युवा ये सोचता है कि यार अगर मैं पूरा महीना लगा रहा हूँ, पूरे महीने बाद मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है या 12 मिल रहा है या 15 मिल रहा है, तो मुझे ये हीरोइन या ये चरस गांजा ले जाने का अगर मुझे एक बारी का ही इतना मिल रहा है तो मैं पूरा महीना क्यों काम करूँ, तो मैं पूरा महीना क्यों किसी की बातें सुनूं, हर रोज़ क्यों किसी की बातें सुनूं, या पूरा महीना मैं स्ट्रगल क्यों करूं, है ना। यही आम तौर पर जो है वो एक नौजवान लड़का सोच सकता है इस चीज़ को लेकर, है ना। ये सवाल आता है जहन में, आता है ये सवाल। अभी मैंने ये सवाल पुटअप किया तो आप सभी के, जितने भी युवा सुन रहे हैं उनके जहन में भी आता होगा कि बात तो सही है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर नशे की ओर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं कि पूरा महीना क्यों किसी की बातें सुननी यार, पूरा महीना क्यों इतना स्ट्रगल करना, चलिए एक बारी में इतना आ गया है काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न मुझे लगता है कि यहाँ से भी जो है वो नशा बढ़ रहा है और इसके जो पंख है वो और ज़्यादा फैल रहे हैं और ज़्यादा जो है वो ये उड़ान भर रहा है नशा। क्योंकि अगर एक बारी में मुझे 10,000 रुपया मिल रहा है तो मैं क्यों पूरा महीना 30 दिन किसी की बातें सुनूंगा, क्यों किसी की गुलामी करूंगा, है ना। तो ये विचार भी जो है वो आते होंगे जहन में। लेकिन अब इसके ऊपर एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा, उसमें बरकत होती है, उसमें वो रोब होता है, उसमें वो ताजगी होती है श्रोताओं। वो मेहनत का पैसा है, ये मेहनत का पैसा नहीं है। ये आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप खुद भी नहीं करते तो आप ले जाकर न जाने कितने ही युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, न जाने कितने ही लोगों की जो है वो आप, कितने ही घरों को आप बर्बाद कर रहे हैं, कितने ही परिवारों को आप बिछोड़ रहे हैं। सो मेहनत से अगर, मुझे लगता है चलो आजकल 8-10 हज़ार 12 में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेहनत से कमाया जाए और मेहनत की उस कमाई में बरकत हो तो बहुत कुछ हो जाता है। श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए गुड इवनिंग धर्मशाला को आगे बढ़ाएंगे हम श्रोताओं और सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। लेके चलते हैं इस गीत की ओर।

0: click on the bell icon.
1: शोधा एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, विद्युत उपमंडल धर्मशाला संख्या 2 के सहायता अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 400 केवी रेनबो बडोल के क्षेत्र लोहर बडोल में 5 जून को 250 केवी हैबर के क्षेत्र हैबर में 6 जून को 250 वैसे मुझे लगता है हैबर नहीं हब्बर होना चाहिए अच्छा कश्मीरी कॉलोनी हाँ बिल्कुल हब्बर होना चाहिए माफ़ करें प्रिंट थोड़ा सा गलत हुआ है। हाँ तो मैं बता रहा था कि लोअर बडोल में 5 जून को और 6 जून को हबड़ में और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं कश्मीरी कॉलोनी के क्षेत्र नज़दीक अमूल दुकान क्षेत्र में 8 जून को 9 जून को जो है वो मेला ग्राउंड के क्षेत्र दाढ़ी बाज़ार में 10 जून को जो है वो गैस एजेंसी क्षेत्र नज़दीकी लुंगड़ू चौक में नज़दीकी गैस एजेंसी में 11 जून को सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक जो है वो विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यदि मौसम ख़राब रहता है तो कार्य अगले दिन किया जाएगा श्रोताओं। तो चलिए जी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेगी न करेगी तो आप सभी ने सुना और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं आपके अपने वीडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आई श्रोतो, तो वक्त हुआ है वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। और श्रोतो, मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर है, मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय ख़राब ये स्थिति लग रही है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है श्रोतो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान इस समय जो है वो चला हुआ है। बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो निगुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। फिलहाल श्रोताओं अब वक्त हुआ है 7:45 और अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। तो सुनते हैं प्रादेशिक समाचार वेड़ी गुंजन पर, यूं ही बने रहेगा, जुड़े रहेगा आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ हमारे साथ।
1: जनक में जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है जिसमें निशुल्क काउंसलिंग उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार। प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति। मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
1: पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
0: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
1: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे। वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की मुझे वो है, कोई भी अगर कोई काम कर

0: लगता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है। हम उसका जो आलोचना करते, माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और सरकार की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा के साथ पंचायती राज व नगर निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई है।
2: बहुत बड़ा संदेश है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को कि आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के, क्योंकि जन विरोधी नीतियां पूरे हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर थोपी गई, जो फैसले लिए गए, जिनके कारण हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो रोष है, आक्रोश है लोगों के बीच में, वो जाहिर हुआ इन चुनावों में। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी, उस मजबूत आधार जो है इस चुनाव के परिणाम के साथ रखा गया।
1: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना व सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
3: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक, हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
1: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 जनवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है, और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर के लगभग 100 युवा इन दिनों किन्नौर जिले के दौरे पर हैं। एक सप्ताह तक ये युवा अलग अलग गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: देश भर से आए करीब 100 युवा हफ्ते भर तक किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, राजनीतिक महत्व और परंपराओं से रूबरू होंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहाँ के अलग अलग गांवों में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का भी अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माई भारत द्वारा किया गया है। आकाशवाणी के
1: नगर निगम शिमला में सहब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आज वार्षिक आम बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सहब सोसाइटी के सभी निष्कासित कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सहब कर्मचारियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में आया है। दूसरी ओर सहब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि इस बैठक में शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक शामिल नहीं हुए, इसलिए वे इस बैठक को एजीएम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई के दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
5: देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, 31 मई को 3:30 बजे आईजीएमसी के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
1: सनराइज सोशल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एसोसिएशन ने कुल्लू जिले में पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त हुई बागीपुल निर्मंड अवेरा चंभू नहर को जल्द दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुभाष मोहन स्नेही ने कहा कि क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए ये नहर अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रशासन के उदासीन रवैये से किसान बागवान परेशान हैं। स्नेही ने कहा कि इस नहर के क्षतिग्रस्त होने से इलाके के हजारों किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार। प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति। मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक। चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ। यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर 100-100 बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितने दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, समय उसे भी वही पीड़ा देकर सौ सौ बार रुलाता है। इसलिए किसी को कष्ट देने से पहले ये अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि वही कष्ट तुम्हारे जीवन में लौट आया तो क्या होगा। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। जैसे बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है।
5: मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके।
6: गलती तो मुझसे होगी तुमसे जो शादी कर दी मैंने। पता भी कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए।
5: हाँ तो दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वाले को तो तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता होगा।
7: Oh, shit!

धोबी ने धोबन से कहा कि वो घाट पर पानी लाने ना जाए, क्योंकि वहां पर राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। धोबी के लाख मना करने पर भी धोबन नहीं मानती।

की आवाज़ बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।